0: ਖਬਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਵੀਨ ਸਕਸੇਨਾ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सोनिया राम जी जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी रंगा सिंह जी, बच्चे वाले हो, जय हिंद जी। की हाल चाल है?
0: हाल चाल वाह वाह, पलियन खाई पी द मौजा।

भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधु जन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधु जन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: एकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा,
2: मेरे लिए इस तरह से भी बोलना था, आपने सबसे बड़ा
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रिणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
4: मीडियम वेव 347.6 MHz 73 KHz से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 7 बज चुके ने, पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। औरतों बारे राष्ट्रीय कमिशन ने केंद्र सरकार नूं सिफारिशां सौंपियां। 2030 तक 5 लाख बाल देखभाल केंद्र कायम करना शामिल। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार खामियां नूं दूर करन लई विश्व व्यापार संगठन मुताबिक दृष्टिकोण अपनाउन लई किया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशियां

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो

0: सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
3: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
4: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीखकर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
3: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक

0: जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना

0: फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शाही खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO-consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the

0: 6-2 in the semi-final, securing a quota place for India at the 2028 Los Angeles Olympics. With this victory, India's medal tally rose to 27 bronze medals. In hockey, defending champions India will take on against Malaysia, with the two teams meeting at Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold medal and an LA 2028 Olympics quota. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. The front page news of all the dailies today is on the historic hockey and archery wins in the Asian Games in Japan, with Indian hockey team celebrating the win to qualify for the Los Angeles Olympics. The Times of India headline says, "Poor gold, India equals its best day at any Asiad with haul of six." Recounting the mid-air incident, PM Modi shares unforgettable conversation filled with pride and emotion with hero pilot who saved lives on social media platform X, cites the Statesman. Hindustan Times refers to the Russian President Putin hailing Prime Minister Modi having very good ideas aimed at mutually acceptable solution for ending Ukraine war. In a move to standardize official cartography and enhance public awareness of the sensitive border region, India adds 28 sites in Ladakh to official map, states the Asian Age. And finally, the Pioneer writes, Vande Bharat Express sets 100 km per hour record over the highest and first cable stay Chenab Railway Bridge. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today, with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mahor clinches gold in recurve event, Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी है खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां भारत ने व्यापार रुकावटां डंपिंग अते अनुचित कीमतां तय कीते जाण नूं हल करन लई विश्व व्यापार संगठन मुताबिक उपावां लिखे है अमरीका विच तेल दीआं कीमतां च रिकॉर्ड वाधे तों बाद G7 देशां दा 10 करोड़ बैरल डीजल ते कच्चा तेल जारी करन दा फैसला संयुक्त राष्ट्र ने भारत विच ग्रीन एनर्जी कोरीडोर ते तीजे पड़ा GEC3 नूं मंजूरी मिलण दा स्वागत कीता है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अज उज्जैन विच 255 करोड़ रुपए दी लागत वाले डेयरी प्लांट दा नींह पत्थर रखणगे एशियाई खेडां विच किशोर खिडारन कुमकुम मोहत ने औरतां दे व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबले विच सोने दा तमगा जित्तिया मर्दां दी हॉकी विच मौजूदा चैंपियन भारत मलेशिया खिलाफ मैदान च उतरेगा हुण खबरां विस्तार नाल अमरीका दे मिलवाकी विच G20 व्यापार मंत्रियों दी मीटिंग दी समाप्ति ते भारत ने विश्व व्यापार असंतुलन नूं दूर करन लई विश्व व्यापार संगठन WTO दे नियमां दी पालना करन दी जरूरत ते जोर दित्ता व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देश सरकारी सहायता नाल बहुत ज्यादा उत्पादन दा अनुभव कर सकदे ने इस नाल दूजे देशां दे बाजारां विच बेहद घट कीमतां ते समान बेचिया जा सकदा है अते डंपिंग दी समस्या पैदा हो सकदी है उन्हां कहा कि अजिहियां स्थितियां नूं हल करन लई WTO नियमां तहत एंटी डंपिंग ड्यूटियां ते होर जरूरी उपाय कीते जा सकदे ने श्री गोयल ने कहा कि बेहद ज्यादा उत्पादन अपने आप विच कोई समस्या नहीं है समस्या उदो पैदा हुंदी है जदों लुकवी सरकारी सहायता जां सबसिडियां करन किसी देश विच उत्पादन बेहद ज्यादा वध जांदा है उन्हां कहा कि उत्पादन ते सप्लाई चेन नूं वख-वख देशां च फैलाउणा जरूरी है पर इस दे नां ते WTO दे नियमां तों बाहर जाके कदम नहीं उठाउणे चाहीदे श्री गोयल ने जोर दे के कहा कि विकासशील देशां नूं अपनियां सनअतां

हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। सवेर दे 9 वज चुके ने। पेश ने हुण तक दीआं मुख खबरां। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार खामियां नूं दूर करन लई विश्व व्यापार संगठन मुताबिक दृष्टिकोण अपनाउण लई कहा है। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनी नवी दिल्ली विच नीदरलैंड दे खेतीबाड़ी मंत्री सिल्वियो एरिकेंस नाल दुवल्ली मीटिंग कीती। दोवां देशां विचकार आपसी सहयोग बारे चर्चा कीती। औरतां बारे राष्ट्रीय कमिशन ने केंद्र सरकार नूं सिफारशां सौंपियां। 2030 तक 5 लाख बाल देखभाल केंद्र कायम करना शामिल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम नूं होर तेज़ करन लई सरहदी ज़िलियां विच अध्यात्मिक नशा छुड़ाऊ प्रोग्राम नूं मंजूरी दित्ती। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खुराक अते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी नूं पत्र लिख के अपील कीती है कि भंडारण लई थां दी घाट कारण किसानां नूं मंडियां विच मुश्किल दा सामना ना करना पवे। जलंधर पुलिस ने फगवाड़ा दी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अते पटियाला पुलिस ने राजपुरा दी चितकारा यूनिवर्सिटी विच हाल ही विच होई गड़बड़ी दे संबंध च कुल 11 लोकां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने तपदिक विरुद्ध लड़ाई नूं लोक लहर बनाउण दा सद्दा दित्ता है। अमृतसर देहाती पुलिस ने गैर कानूनी हथियारां अते नशीले पदार्थां दी सप्लाई दे 2 वख-वख नैटवर्कां दा पर्दाफाश करदिआं 4 व्यक्तियों 10 किलो हेरोइन अते 10 गैर कानूनी पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया है। विज्ञान अते तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स मेडिसन दे वख-वख खेतरां विच एक अहम साधन बनन जा रहा है। खादी अते ग्राम उद्योग कमीशन दे चेयरमैन मनोज गोयल ने दसिया है कि देश भर विच खादी ते एक विशेष छूट मुहिम शुरू की गई है। ये छूट अगले महीने की 16 तरीक

0: हॉकी दी चलाकी दियां रमजां बयान करदा। खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण कुछ पंजाबी गीत सुणदे हां। सब तो पहला गीत डॉली गुलेरिया की आवाज़ के बीच गाया।

0: जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग के अंकड़े अनुसार 2023 कुल सैलानी आमद विच महत्वपूर्ण वाधा दर्ज होया। केंद्रीय सैर सपाटा मंत्रालय वालों दिते अंकड़े अनुसार 2024 जम्मू कश्मीर विच घरेलू सैलानियों की गिनती 2.35 करोड़ तो वध रही, जबकि विदेशी सैलानियों की गिनती 65,452 दर्ज की गई। सैर सपाटे विच वाधे का सीधा लाभ सिर्फ होटलों नूं नहीं हुंदा। टैक्सी चालक, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प कारीगर, टूर गाइड, फल विक्रेता, स्थानक दुकानदार अते होर छोटे कारोबार भी इस नाल जुड़े हुंदे ने। इसलिए जे सैलानियों की आमद वधदी है तां स्थानक पद्धर ते रोजगार दे मौके भी वध सकदे ने। खेतीबाड़ी अते बागबानी, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था विच सेब, केसर, अखरोट, बदाम अते होर बागबानी उत्पादन की विशेष महत्ता है। केंद्र सरकार वल्लों 2019-20 विच दित्ती जानकारी अनुसार कश्मीर तो वड्डी मात्रा विच सेब देश दे होर हिस्सों तक भेजे गए अते NAFED राही सीधी खरीद की व्यवस्था भी की गई सी। बाद दे सालां विच खेतीबाड़ी अते बागवानी लई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट प्लान वर्गे उपरालिया नूं भी अगे वधाया गया। किसानां लई चुनौतियां फिर भी मौजूद हन। मंडी तक पहुँच, कोल्ड स्टोरेज, आवाजाई, मौसमी तब्दीली वर्गे मुद्दे अजे भी महत्वपूर्ण ने। इसलिए विकास का अर्थ सिर्फ नवीं योजनावां नहीं सगों उन्हां दे लाभ नूं किसान दे खेत तक पहुँचाना भी है। सेहत ते सिख्या, सेहत दे खेतर विच मैडिकल कालजां, हस्पतालां ते सेहत सेवावां दे विस्तार नूं महत्व दित्ता गया। इसका लंबे समय का उद्देश यह है कि जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थियों नूं उच्च सिख्या, तकनीकी सिख्या अते रोजगार लई अपने खेतर तों बाहर जाण दी लोड़ घट पवे अते स्थानक पद्धर ते भी मौके उपलब्ध होण। श्री नरेंद्र मोदी।
1: जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
0: महिलावां ते सामाजिक न्याय, धारा 370 दे बदलाव तो बाद केंद्रीय कानूनां दी लागूता दा एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलावां अते समाजिक तौर ते पिछड़े वर्गां दे अधिकारां नाल संबंधित है। सरकार ने महिलावां नूं संपत्ति अते होर कानूनी अधिकारां दी समानता, अनुसूचित जातियां अते कबायली भाईचारे दे अधिकारां अते समाजिक सुरक्षा नाल संबंधित प्रबंधां नूं लागू करन नूं महत्व दित्ता। यह तब्दीली इस गल नूं दर्शाउंदी है कि संविधानिक बदलाव दा प्रभाव सिर्फ राजनीति जां प्रशासनिक पद्धर तक सीमित नहीं हुंदा, सगों रोजाना जीवन नाल जुड़े कानूनां अते अधिकारां तक भी पहुंचदा है। पंचायती राज अते स्थानक लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर विच स्थानक पद्धर ते लोकतंत्रिक संस्थावां नूं मजबूत करन दा काम भी इस दौर दा एक पक्ष रहा। सरकारी जानकारी अनुसार धारा 370 दे

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मेरे वेब 347.6 मीटर नेटसो 73 किलो हर्ट्स, टीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यही जलंधर केंद्र है। हुन पेश है प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

0: रैप सॉन्ग्स पसंद करते हो जां फिर नचन गाउण वाले भी डांस बीट गीतां दी तुहानूं वधिया लगदी है ते उहनां दे उत्ते थिरकदे भी हो नचदे भी हो जिवें दा भी गीत पसंद है संगीत पसंद है उस दे नाल जरूर जुड़ो ते जुड़ तां साडे अगले कॉलर भी गए ने साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच अपनी पसंद दे गीत दे नाल कौन आए ने गलबात करदे आ हैलो सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो
1: पर
0: तुहाडी तां लग जांदी जी कॉल तुहानूं तां वैसे ही टेंशन नहीं हुंदी जी बिलकुल जी
1: छेती छेती मैम आया करो
0: जी कोशिश रहिंदी है जी साडी जल्दी जल्दी आउण दी पर कई वारी हुंदा है कि प्रोग्राम नहीं जा रहा हुंदा ते उस दिन तुहाडे नाल नहीं मुलाकात हुंदी पर फिर भी किते ना किते किसे ना किसे प्रोग्राम दे विच तुहाडे सारयां दे नाल राबता जरूर साडा बनिया रहिंदा है की दसो कुलदीप जी केड़ा सुनोगे
1: मैं गाना सुनना जी तेरे यार कहां ऐसा जियाराना
0: किशोर कुमार दी आवाज दे
1: विच मूवी दा गाना जी
0: बिल्कुल जी
1: जलंधर जहां यार कहां
0: बिल्कुल तुहाडे तक पहुंच गया तुहाडी पसंद दा गीत याराना फिल्म दे विचों किशोर कुमार साहब दा गाया।

0: चल रहा है जिस दे विच बिल्कुल जी तुहाडी पसंद दे गीतां दी कदर कीती जांदी है ते तुहाडे तक पहुंचाए जांदे ने। अगली फरमाइश दे नाल अगले कॉलर भी आ गए ने। हैलो
1: नमस्कार भैन जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: भैन जी मैं रामनाथ बोलदा जी, पिंड तापरा जिला श्री फतेहगढ़ साहब
0: जी। रामनाथ जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा।
1: हाँ भैन जी थोड़ा भी धन्यवाद जी,
0: गीत केड़ा सुनोगे?
1: गीत ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰਾ ਕਿਆ ਕਾਵਾਂ ਗੀਤਾ ਪੁੱਛ ਜਾਏ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੀ।
0: ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की सहायता से ज़रूरत से अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाज़ारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत वापस लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब ब्रिक के नाम से तुर्की की नागरिकता लेकर अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित करवाया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणवी ने देश के लिए गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वे भारतीय महिला भी बन गई हैं। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक

0: जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पदक तालिका में 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। तमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ। तुहाडे वट्सअप मैसेज राही आईया फरमाइशां देखदे हां जी कि अज साडे नंबर ते केड़ी केड़ी फरमाइश आई है, केड़े केड़े गीत की फरमाइश आई है। पर उस तो पहला असीं तुहानूं दस दईए कि साडा नंबर की है, ताकि जिन्हां ने हाल तक मैसेज नहीं किया वह भी कर सकन। नंबर है जी 94-655-3607। तो जे हुण तक तुसी मैसेज नहीं किया तो तुसी इस वट्सएप नंबर पर मैसेज करके सानूं दस सकते हो कि तुसी केड़ा गीत सुनना चाहते हो। आओ फिर वेखदे हां कि पहली फरमाइश कि आई है। पहली फरमाइश है जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा दी। अगले साथी ने पंचकुला तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भविक टिंगरा मक्खू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज। अगले साथी ने जी दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल ते कुणाल मेहरा। अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह नीति सुरभी अश्विन मंगलाबेन शाह ते राजेंद्र जी शाह दी। पिंड अलवाना मियाना तहसील पायल जिला लुधियाना तो लिखते हैं दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतबीर सिंह राजपूत रायपुर सनावत तो दिलीप मालाकर सुनीता मालाकर योगेश मुस्कान जितेंद्र धर्मेंद्र रीना मालाकार निशा मालाकार ते हैप्पी मालाकार।

अगली फरमाइश है, धतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरा मनी वर्मा, पारस मनी वर्मा, पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नोखे लाल वर्मा दी। गुरमीत सिंह लिखते ने जी, साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो, चकला बाजार समाना शहर तो, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू समायल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल। आओ फिर इन्हों सब की रली मिली पसंद आ। प्रोग्राम का अगला गीत हाजिर कर दें कंठ कलेर की आवाज़ में।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती। इस प्रोग्राम च सानू अगला मैसेज आया है साउथ एवेन्यू अबोहर तो जसपाल भारती, वीना भारती, सुरिंदर, मनदीप, डिंपल, युवराज ते हैप्पी हरप्रीदा। अगले साथी ने जी जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी ते तमन्ना भाटिया। मिद्दू खेड़ा श्री मुक्तसर साहिब तो लिखते ने कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति सुमन ते मनीषा, अब्दुल गफार डवार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर ते मोहम्मद उमर डावर। ए मैसेज है जी नागचुन रोड संजय कलोनी खंडवा तो। साधुल शहर राजस्थान तो लिखते ने राम कुमार रेवाड़ ते चंद्रकला रेवाड़ पिंड कातरो तो। अमरीक सिंह औलख, जसविंदर, सुखमन प्रीत, सुखनजीत, जशनविंदर खेड़ी। मेन बाजार मंडी लादूका जिला फाजिलका तो लिखते ने अनमोल चावला, दीपिका चावला, किरणा चावला ते वारिस। ते अगले साथी ने

राजस्थान तो लिख देने, राम कुमार रेवाड़ ते चंद्रकला रेवाड़ पिंड कातरो तो। अमरीक सिंह औलख, जसविंदर, सुखमन प्रीत, सुखनजीत, जशनविंदर खेड़ी। मेन बाजार मंडी लादूका, जिला फाजिलका तो लिख देने अनमोल चावला, दीपिका चावला, किरणा चावला ते वारिस। ते अगले साथी ने पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा लिख देने जी बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो। गांव टानी लाल खां तो लिख देने जावेद खां, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो ते विनोद खान। मेन बाजार मंडी लदुका, जिला फाजिलका तो वरिंदर कालड़ा, रेखा कालरा, परीक्षित कालरा ते प्रांची टेंगरा। ते अगले साथी ने करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया। पिंड शाहपुर मैतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुल जोत सिंह, अनहित कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर ते हरप्रीत कौर, गगनदीप सिंह। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनते हाँ। आसा सिंह मस्ताना दी आवाज़ विच हाजिर है जी प्रोग्राम दा अगला गीत।

पवी जस्सी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय ते हैप्पी राय, दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय ते प्रांजल रॉय, राव करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, हरजीत कैंट मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो पिंड नथाना बठिंडा तो लिखते ने हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी बटाला तो लिखते ने जी रोहित, सुमित, प्रीति, साक्षी ते बेबी अमिका। अगली फरमाइश है आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना ते निवान शर्मा दी। टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतर्थ, अर्नव चतर्थ, लाजवंती ते अनीता रानी दी। पिंड कबूल शाह खुबन जिला फाजिलका तो मैसेज है नवजोत, हरमन, हैरी ते हैपी दा। मोहाली चंडीगढ़ तो लिखते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह। कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया ते अपार ढींगिया, ए मैसेज है जी भागपत उत्तर प्रदेश तो। तवा मंडी तो शमशेर सिंह, हां सतपाल मान ते अगले साथी ने पिंड अरायन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। ते अगला मैसेज है सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया ते इब्राहिम सद्दाम दा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी ते देखते हैं जी इस प्रोग्राम च अगला मैसेज किदा आया है। मैसेज आया जी अगला विजय गोयल बजीतपुर कटियां वाली तो लिखते ने फाजिलका तो पुरानी तहसील चौंक फतेहाबाद हरियाणा तो मैसेज है बिट्टू स्टैंप मेकर इंद्रपालपुरी चंचलपुरी आंचलपुरी ते गगनपुरी दा। अगले साथी ने पिंड कबूल शाह खुबन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तन

Via बिजानिया। पंचकुला तो मैसेज है वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा ते अंजलि ते नाल ही शुभम ते लवली दा मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह यह लिखते हैं जी जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो पिंड इस्लामवाला जिला फाजिलका तो लिखते हैं सोहन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगुन राठी लवकुश वर्मा शतरपाल सिंह खंगूरा रजिंदर सिंह खंगूरा बाबू सिंह मेनेवाला काका बट्टी ते अगले साथी ने फाजिलका तो इंदरजीत मंगा मेहमगिर नाभा तो लिखते हैं सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरुमंत ते खुर्जा उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब तो लिखते हैं प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन ते अभिजोत ते अगले साथी ने मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खन्नी मोहम्मद अल्तमश खन्नी रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खन्नी सनावतो आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजर है सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रोग्राम चल रहा है जी तमक जलंधर पैंदी। तो इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी ते

अमित आहूजा दा। अगले साथी ने जी कादियां तो अशोक अदीप बिंदू बिट्टू ते मनदीप सिंह लिखते ने जी बस स्टैंड जलालदीवाल जिला लुधियाना तो। कृष्ण लाल सिमरी देवी मनोज कुमार पुष्पा रानी शैलेंद्र कुमार एम एस एज है पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो। पिंड साबुआना फाजिलका तो लिखते ने करण कंबोज चरण कंबोज रियांश मानव ते परीश कंबोज। अगले साथी ने नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल नहावकर मलकापुर तो नारायण इंगले सोपान ताइड़े ते आशीष मोहरकर। अगली फरमाइश आई है पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बाल कृष्ण शर्मा प्रवीण शर्मा मुनीश शर्मा ते राहुल शर्मा दी। पिंड माधोपुर जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी राज कौर ज्योति गोल्डी गुरु फतेह सिंह राम लाल खरोड़ा ते बाबू टिवाना। छत्तीसगढ़ दतरेगी तो लिखते ने भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा। अगले साथी ने पिंड जाखोद राजस्थान तो शंभु दयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदर लाल योगेश कुमार दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक। अगला मैसेज आया जी पिंड फुलो मिठी बठिंडा तो हरजा सिंह ढिल्लो दीपिंदर सिंह ढिल्लो गुरवारिस सिंह भोला सिंह बलकौर सिंह सिद्धू। ते अगले साथी ने पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर तो जिला फाजिलका तो आस्था जयश्री संतोष चावला हेमंत दीपक रमेश रायजल हेजल विहान रिजू बब्बू ते वीहू चावला। पिंड तमोड़ जिला लुधियाना तो लिखते ने बूटा बिंदर सिंह तालीवाला तालीवाल वाला प्रगट सिंह तालीवाल रवि पारसो। ते अगली फरमाइश है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति ते पौरुष दी वाइटफील्ड बैंगलोर तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच।

तरनवीर सिंह ते मुमताज। कंगनपुर जिला कसूर जाफर तो मैसेज है मेव अब्दुल गफूर ते मोहम्मद सरवरदा। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश तो लिखते हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान ते राजकुमार बुड़ाना। ते नाल ही सुदामा नगर खंडवा तो मैसेज है लक्ष्मी नंदनी रोहित रितु ते मुकेश जगताप दा। अलिका तहसील डबवाली तो लिखते ने रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा ते रानी सोनू रचनी। हनुमानगढ़ तो राजस्थान तो मैसेज है रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान दा। योगनगर बुढ़लाडा पंजाब तो लिखते ने प्रेमलता मेहता, नरिंदर मेहता, सुनीता हनी ते सिमरन मेहता। अमरीक एलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो लिखते ने जी हरजिंदर सिंह बराड़ का मैसेज है पिंड जीदा जिला बठिंडा तो। पिंड हीरा वाली जिला फाजिलका तो लिखते ने सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा। ते अगले साथी ने मनीला फिलिपिन तो मदन मोहन लहर, सरबजीत लहर, संजू लहर, नीतिका अंजल एंजल ते अजय लहर ते नाल ही अर्नव लहर। गोला बाजार बक्सर तो मैसेज है श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य ते परमानंद आर्य दा। बक्सर बिहार तो लिखते ने शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी ते सुमित रमेश साहू। डुमराओ बिहार तो मैसेज है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा ते दानिश अंसारी दा। ते सारिमपुर बक्सर तो राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी ते इकबाल मस्तान दा। पदमपुर तो लिखते ने भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मकड़ ते मुखी राम। ते अगले साथी ने पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता।

0: था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: हाँ जी, गगन कमाल था, वाकई हो गया वैसे।
1: बिल्कुल जी, और कमाल एशियन गेम्स विच भी होया जी। 44 साल बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने गोल्ड जीतया जी,
0: वाकई
1: बहुत
0: जी,
1: मान वाली गल है
0: बहुत
1: साडे
0: मान
1: सब
0: वाली
1: लई।
0: गल है। जित दा परचम लहराता है जी भारतीय महिला हॉकी टीम ने। कल हॉकी दे फाइनल हॉकी मैच दे विच भारतीय महिला टीम ने चीन नूं 1-0 नाल हरा के गोल्ड मेडल जितया है जी।
1: बिल्कुल जी, ते गाना भी फिर ऐसी नूं ही समर्पित सी कि वाकई कमाल हो गया।
0: देखो, पूरी टीम ने अपने देश का नाम रोशन किया है और एक शानदार जीत जड़ी है हासिल की है। सो पूरी दी पूरी जड़ी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम है वो वधाई दी हकदार है। शुभकामनावां ने साडियां और उन्हां दे परिवारां नूं शुभकामनावां ने, और उन्हां दे जिहड़े कोच ने उन्हां नूं भी साडियां शुभकामनावां
1: जी
0: ने जी।
1: बिल्कुल, बहुत ही मान वाली गल है। ते हुण असीं वगली अपने अगली चिट्ठी वाल वधदे हां।
0: बिल्कुल जी, अगली फरमाइश है, कहिंदे जी सतविंदर बिट्टी का गीत सुना दिओ सानू। पिंड राजपुरा जिला फाजिलका तो आया है खत। हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, जगसीर सिंह, ज्वाला सिंह बराड़, डॉक्टर परमवीर ते दीपू, और नाल दे नाल पिंड गोबिंदगढ़ माझी वाला तो अमृत वड़वाल ते सहजदीप वड़वाल।
1: ते फिरोजपुर तो लिख रहे ने सोनू कपूर, हर्ष कपूर, सौरव कपूर अते मुस्कान कपूर। ते नाल ही अबोर तो लिख रहे ने कप्तान सिंह, शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा ते रविंदर और हरफूल।
0: ते आओ सुनते हैं फिर इन्होंने सब की फरमाइश ते सतविंदर बिट्टी की आवाज़ से गीत।

0: हाँ जी, श्रोते सुन रहे ने अपने मनपसंद गीत और सिलसिला चल रहा है झांझरा दे बोर। और गगन, देखो मनोरंजन दे नाल नाल असी खास जानकारियां भी अपने श्रोतियां दे नाल सांझियां जरूर करते हैं।
1: जी बिल्कुल, जिवें असी पहले गल कीती कि एक पूरा हफ्ता असी समर्पित है वाइल्ड लाइफ, जिवें वाइल्ड लाइफ वीक असी कहने हां, इस तरह एंटी अनटचेबिलिटी वीक भी मनाया जा रहा है। देखो जी, ज्योति चाहे असी दुनिया विच सारे ही एक कट्ठे परमात्मा दी सब विच जोत है, कोई नीवा नहीं हुंदा, कोई उच्चा नहीं हुंदा, ते इस करके अगर यह फर्क परमात्मा ने नहीं किया तो यह फर्क सानू भी करन दा कोई हक नहीं हैगा।
0: बिल्कुल, और देखो हर एक नू बराबर दा सत्कार
1: बिल्कुल
0: मिलना, बराबर दे हक मिलने, बराबर दे मौके मिलने बहुत जरूरी है। और असी ए जिहड़े हफ्ते इस तरीके दे मनाने आ उन्हां नू सार्थक करन लई अपनी सोच बदलनी बहुत जरूरी हुंदी है। गगन, असी हर जात पात तो उपर उठ के आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम प्यार नू बढ़ावा देना है, उहदे विच अपना सहयोग जिहड़ा है जरूर करना हुंदा है। क्योंकि देखो गांधी जी दे वी इही विचार सन कि हर मनुख बराबर हुंदा है,
1: बिल्कुल
0: भेदभाव सानू किसी तो भी नहीं करना चाहिए।
1: और कई बार अपने फ्रेंड्स कल सर्कल जाते हैं ना, असं तो कोई देखते हैं कि भी किसी के विचार इन्ने वधिया नहीं इस पास, तो साड़ी ड्यूटी बन जाती है कि असी उस वेले तो नहीं पर बाद विच बैठ के उनू इस गल नू जरूर उनू समझाइए ताकि वो विचारों नू बदल के असी अच्छे सार्थक पासे लैके जा सके। यह भी साड़ी एक सेवा ही है और यह हफ्ता मनाया ता ही सफल है जे दिलों असी इस चीज़ नू समझिए और कुछ कदम पुटिए इस चीज़ नू अगे प्राप्त करन वास्ते।
0: बिल्कुल जी, भेदभाव नू छड़ के इंसानियत नूं ही असी अपनाइए, यही इस हफ्ते का जड़ा है मंतव है। और अगला गीत जड़ा है वो सुनना चाहते ने कौन, देख लीए जरा।
1: जी बिल्कुल, अपनी चिट्ठियां खोल दें और नाम पढ़ दें उन्हें सब साढ़े सुनने वाले दे जो इंतजार कर रहे हैं कि हूँ साड़ी चिट्ठी की वारी आनी वाली है।
0: बिल्कुल जी, मेरी वारी कदों आएगी, उन्होंने खत तो पढ़ दिता, साडा नहीं पढ़िया हले तक।
1: बिल्कुल जी,
0: है ना, तो कोई नहीं जी, ताड़ी वारी भी आ जाएगी। और हंसराज हंस के गाए गीत लई फरमाइश जिन्होंने की है उन्हों का गीत खत पढ़ दें। गिद्दड़ बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा, महादेव घाट अमलेश्वर तो डोमन ठाकुर, सुमन मिथलेश, तारनी सूरज, ज्योति रियांश ते गुड़िया ठाकुर।
1: ते हाजीपुर तो लिख रहे ने जी विजय, पूजा ते अलीशा, ते नवा शहर तो चिट्ठी लिख रहे ने अमरजीत, परमिंदर, राजा, कुलविंदर अते अंबा, ते एवी हंस राज हंस दे गाए हुए गीत दी ही फरमाइश कर लेने। तो सुनिए एक गीत, असी भी सुनते हैं ते साडे श्रोते भी सुनते ने और खूब इंजॉय करते हैं
0: जी।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोट।

0: दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
0: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: फौजी हीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां फिल्म फुकरे दा। इस गीत विच पंजाबियत, मस्ती ते प्यार भरियां खूबसूरत धुनां दा एक बहुत ही दिलकश सुमेल है।

0: प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनूं एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: फौजी वीरो प्रोग्राम दा अगला गीत पुरानियां यादां नाल भरिया है, पर इस विच नवियां धुनां भी समाईयां ने जो इस गीत नूं होर भी मिठास नाल भर दिंदियां ने। आओ फिर सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत, फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तो।

0: प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई।
1: जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म स्कैन अते भेजन लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजन दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
0: फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव आजकल दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है नीरज ते सुनिधि चौहान ने।

0: फौजी वीरो ए प्रोग्राम जारी रहेगा। फिलहाल तुसी सुनोगे हुन तो कुछ देर बाद पंजाबी खबरां 1:40 ते ते उस तो बाद साडे दिल्ली केंद्र तो उर्दू च खबरां 1:50 ते।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक्त करके नहीं देखा जा सकता अते तेजी नाल बदलदी दुनिया च सारियां दी शमूलियत ही मजबूती दी बुनियाद है। सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले मुख्य सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तो भारत लियाउण च सफलता हासिल की। संयुक्त अरब अमीरात के अटारनी जनरल कौंसलर डॉक्टर हमद सैफ अल शमसी ने कहा फ्लाई दुबई उड़ान की जांच विच पाया गया कि सह पायलट ने दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश की सी। होरमुज़ जलमार्ग विच कुवैत के झंडे वाले टैंकर से हुए हमले तो बाद पांच भारतीय नागरिकों नूं सुरक्षित तौर पर बचा लिया गया है अते भारत ने एशियाई खेडां च क्रिकेट के फाइनल विच पाकिस्तान 19 दौड़ां हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। हुण खबरां विस्थार दे नाल।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी नाल बदलती दुनिया विच समावेशता यानी रलवी मिलवी शमूलियत ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन अज नवी दिल्ली विच पंजवें कौटल्या आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन कर रहे सन। सम्मेलन का विषय सी बदलते समय विच मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति समावेशी पहुँच और मौजूदा हालात के अनुकूल नीतियां बनाउन नाल लोकतंत्र अते विकास इकट्ठे अगे वध सकदे ने अते निरंतर विकास लई मजबूत नीं रखी जा सकती है। उन्हां कहा कि असल मजबूती इस गल नूं यकीनी बनाउण विच है कि कोई भी नागरिक उद्यम या खेतर पिछे ना रह जावे। उपराष्ट्रपति ने 2047 तक एक विकसित भारत दे निर्माण लई समूहक यतना दा सद्दा दिता। श्री राधा कृष्णन ने तेजी नाल बदलदियां आलमी तरजीहां आधुनिक तकनालोजी अते वध रहियां जलवायु चुनौतियां दौरान आपसी सहमति नाल फैसला कुण निर्णय लैण दी लोड़ ते जोर दिता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संकट दे वेले सहमति ते आधारित फैसलियां दी लोड़ होर वध जांदी है। उन्हां कहा कि बहस अते चर्चा बेशक जरूरी ने पर अंत विच इसका नतीजा इहो जिहा होना चाहिए है जो सारियां नूं प्रवान होवे। सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तो भारत वापस लियांदा है। देश दी एजेंसियां दी इस उपलब्धि नूं सांझा करदिया केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि नवप्रीत सिंह ने नवाब विरक की जाली पछाण तहत तुर्कीए की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान तो भारत हैरोइन और मैथामफेटामाइन की तस्करी की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विरक नाँ रख के तुर्कीए की नागरिकता प्राप्त कर चुका सी। वो अफगानिस्तान तो भारत में हैरोइन मैथामफेटामाइन ते होर नशे तस्करी करता रहा। उन्होंने एजेंसियां दी इस प्राप्ति ते वधाई दित्ती है। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सरहद पार टैक्सेशन नियमों की पालना ते भारतीय उद्यमों नूं आलमी पूंजी निवेश लई तैयार करके भारत अमरीका आर्थिक भाईवाली नूं मजबूत करन च भूमिका निभा सकते ने। उन्होंने शिकागो मिशीगन अते ओहायो शाखावां दे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाल गलबात दौरान यह प्रगटावा किया। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि मीटिंग दौरान भारत अमरीका आर्थिक भाईवाली विच विस्थार दे मौकियां बारे भी विचार वटांदरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत जी डी पी वाधा अते रिकॉर्ड सीधा विदेशी निवेश भारत की आर्थिक गति नूं दर्शाउंदे ने, जिहड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे आत्म विश्वास नाल भरे स्वै निर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर और यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। संयुक्त अरब अमीरात के अटारनी जनरल कौंसलर डॉक्टर हमद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई उड़ान FZ-1073 की घटना की जांच च पाया गया है कि सह पायलट ने दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश की थी। अमीरात न्यूज़ एजेंसी ने डॉक्टर अल शमसी के हवाले नाल दस्या है कि सह पायलट ने उड़ान दौरान ही कार्रवाई अंजाम देना शुरू कर दिता सी। उसने फ्लाइट टैक के अंदर कैप्टन समित मछार उत्ते कुहाड़ी नाल हमला किया और हवाई जहाज़ का कंट्रोल अपने कब्जे च लैण की कोशिश की। घटना के पिछे पूरे हालात अते उद्देशां नाल किसी भी संभावी संबंध का पता लाने लई जांच जारी है। भौतिक अते डिजिटल सबूतों की तकनीकी जांच अते विश्लेषण भी चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सारियां जरूरी प्रक्रियावां पूरियां होने तो बाद अंतम नतीजों का ऐलान किया जाएगा। होरमुज़ जलमार्ग विच कुवैत के झंडे वाले टैंकर उत्ते होए हमले तो बाद पांच भारतीय नागरिकों नूं बचा लिया गया है। ओमान विच भारतीय दूतघर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि उसने MT-Kazima-3 विच सवार पांच भारतीयों के बचाव कार्य विच तालमेल किया ते उन्हां नूं सुरक्षित किनारे ते पहुँचाया। भारतीय दूतघर ने बचाव कार्य दौरान लगातार सहयोग अते सहायता लई ओमान के अधिकारियों का धन्नवाद किया। पश्चिमी एशिया विच वधदे तनाव विचकार भारतीय मलाहां नूं लैके जाण वाले कई वपारक जहाज़ों उत्ते हमले होए ने। होरमुज़ जलमार्ग समुद्री रस्ता है जिहड़ा फारस की खाड़ी नूं ओमान की खाड़ी ते अरब सागर नाल जोड़दा है। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ED चंडीगढ़ ने

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तिजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। अब नए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहफाजत बचा लिया गया है। और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज़ाद तिजारती ताल्लुकात का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें दुनिया भर की मईशतों का तकरीबन 75% से 80% हिस्सा शामिल किया जा सकता है। शिकागो में अमरीकी भारतीय कम्युनिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए

0: अब गोयल ने बताया कि भारत ने हालिया बरसों में अपने तिजारती मुजाकरात में खातिरखा उसत पैदा की है और कई मुजाकरात अब भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस बढ़ते हुए नेटवर्क से भारत में मौजूद कंपनियों वसी बैनुलक्वामी बाजार तक रसाई फराहम होगी। जनाब गोयल ने कहा कि 2014 से पहले भारत का दुनिया की मईशतों के साथ आजादाना तिजारती माहदे थे जिनकी मजमुई घरेलू पैदावार तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड आज ही के दिन साल 2014 में विजयदशमी के मौके पर नशर किया गया था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड नशर किया गया। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मन की बात ने मुल्क भर में रोनमा होने वाली मुस्बत यकसर तब्दीली को उजागर करने और भारत के तरक्की के सफर में लोगों की सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस माहाना प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम मुल्क भर के ऐसे लोगों की मुतासिर कुन कहानियाँ शेयर करते हैं जो तालीम, हिफ्जान सेहत, माहौलियाती तहफ्फुज़, इख्तरा और समाजी खिदमात के शोबों में इम्तियाजी काम अंजाम दे रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क्स पर नशर किया जाता है और ये AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब रहता है। ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी लाइव नशर किया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में गौपालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे जो कि दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे की बड़ी तकरीब होगी। इस मौके पर जनाब शाह तकरीब से खिताब भी करेंगे। रियासती सतह का ये गौपालक सम्मेलन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। इस दौरान जनाब शाह मवेशी परवरी के शोबे से वाबस्ता और बेहतरीन काम करने वाली किसान खवातीन की हौसला अफजाई करेंगे। आबनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने आज एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय शहरियों को बहफाजत निकालने में मदद की। मिशन ने इस बचाव कार्रवाई में ओमान के हुक्काम की लगातार मदद और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी मज़ाहमत को समाजी मज़ाहमत से अलग नहीं किया जा सकता और यही शमूलियत तेज़ी से बदलती दुनिया में मज़ाहमत की बुनियाद है। जनाब राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वीं कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मज़ाहमत। नायब सदर ने कहा है कि इत्तफाक राय, शमूलियत और जिम्मेदारी पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मुज़ाहमत इस बात में पिन्हा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत के लिए तामीर के लिए इज्तमाई कोशिशों की अपील की।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, From there, we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजी और उभरते हुए माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तफाक राय के जरिए फैसला साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरान के दौरान इत्तफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत ज़रूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहसो मुबाहसे ज़रूरी हैं लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुँचना ज़रूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत मुनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े मुलजिम नवप्रीत सिंह को तुर्किया से कामयाबी के साथ भारत ले आई है। मुल्क की नफाज कानून की एजेंसियों की इस कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह ने जाली शनाख्त नवाब विर्क नाम से तुर्किया की शहरियत हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मैथम फेटामाइन गैर कानूनी तरीके से भारत भेजता था। उन्होंने बताया कि मुतालिका एजेंसियों ने मुलजिम का सुराग लगाया।

0: इसकी असल शनाख्त बेनकाब की और उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि नवप्रीत सिंह को मुनशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम से मुतालिक कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। वस्मत तालुका के पांगरा शिंदे इलाके में सुबह तकरीबन 9:43 पर 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इससे कबल सुबह 7:47 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद 4.5 शिद्दत का निस्बतन ताकतवर झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जलजले के कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। हिंगोली शहर और जिले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मकामात पर जमा हो गए। नेपाल में आज गंडकी सूबे में एक बस पलटने के वाकये में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक काठमांडू जाने वाली इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे और ये वाकया नवलपरासी जिले के दून इलाके में पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज मुआलजे के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के T20 फाइनल में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 19 से हराते हुए सोने का तमगा जीता। यह मैच आज जापान के निसहिन में खेला गया। भारत की जानिब से दिए गए 212 रन के जवाब में पाकिस्तानी की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 96 रन बनाए, वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अरफात मिनहाज और तेज गेंदबाज अहमद दालिया ने 2-2 विकेट लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के इन्फरादी स्ट्रोक प्ले में सोने का तमगा जीतने और गोल्फ इन्फरादी तौर पर पहला सोने का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनने पर परनवी शरतूर्स को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि परनवी शरतूर्स ने भारतीय गोल्फ की तारीख में यह कारनामा अंजाम दिया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सोने का यह तमगा भारतीय खवातीन के गोल्फ में संगे मील की हैसियत रखता है। सदर जमहूरिया ने परनवी शरतूर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में आज भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इन्फरादी रिकर्व जुमरे में हमवतन धीरज बोम्मा देवरा को 4-6 से हराकर कांसे का तमगा जीता। मर्दों के क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड चंडीगढ़ में महाराजा देवेंद्र सिंह बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। आपनाए हुरमुज में कुवैत के परचम बरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत बचा लिया गया है और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है ते इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म दम लगा के हईशा दा। इस गीत नू आवाज दिती है कुमार सानू ते साधना सरगम ने।

0: जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर शहीद भगत सिंह नगर मलेरकोटला संगरूर बरनाला बठिंडा मानसा फिरोजपुर मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे औहदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: आहुन सुंदियां दोपहर समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बना

0: से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल

0: प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 7 ट्रिलियन डॉलर हो
1: जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी

0: विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना, नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अपडेट रहे, आगे रहे expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी निर्मल सिंह धारीवाल दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे।

0: देख जीवा गुरु तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा, ए बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी आसा राग विच उचारे हुए शब्द विच प्रभु दर्शन की मंग करते ने। हे प्रभु, मैनू दर्शन बख्शो। आप जी की सेवा नाल किन्ने ही इस भव सागर नू तर गए हैं, पार उतर गए हैं। जिस प्राणी नू कोई भी जानता नहीं, आप जी का नाम जप के वह चारे कुंटा विच प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी चौं पासे जय जयकार हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हां दे नजदीक कोई टुकदा नहीं, प्रभु कृपा हो जाए तो कुल सृष्टि ऐसे व्यक्ति दे चरण तो के निर्माण हो जाती है। जिहड़ा प्राणी नाशवान है, उही सच्चे गुरु की कृपा सदका नाम जप के वडभागा हो जाता है। संतां दी संगत सदका जीवां दा सुत्ता होया मन जागृत अवस्था विच आ जांदा है ते उसनू प्रभु अत सुंदर मिठ बोलड़ा अते मिठा लगदा है। ए है प्रभु दर्शन दी महिमा। सुनदे हां सुखनिंदर कौर होरां पासों वार्ता, दर्शन मांगो देह प्यारे।
1: ए ब्रह्मंडी फुरमान जुगो जुग टल शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 386 ते सुशोभित है अते शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा आसा राग विच उचारिया होया है। इस महावाक दा मुख भाव परमात्मा पति प्रेम अते उसदे दर्शना दी तांग है। इस शब्द विच गुरु साहिब प्रभु अगे बेनती करदे हन कि हे प्रभु, मैं तुहाडे दर्शना दी मंग करदा हाँ, तुसी मैनू अपने दर्शन बख्शो। इत्थे दर्शन दा भाव अखां नाल रूप देखना नहीं, सगो प्रभु दी हजूरी नू अपने अंदर महसूस करना अते उसदे नाम सिमरन विच लीन होना अते उसदी रजा विच जीवन जीवना है। दर्शन मांगो देह प्यारे दा महावाक सानू ये भी याद दवांदा है कि प्रभु तो संसारक सुखां दी बजाए उसदी नेड़ता अते उसदे नाम दा दान मंगिए, क्योंकि जिस मनुख नू प्रभु दा नाम मिल जांदा है उस लई दुनिया की हर खुशी छोटी हो जाती है। गुरबाणी का यह संदेश सानू प्रेरणा दिंदा है कि असी हर जीव दे विच प्रभु का रूप देखिए अते हर साह नाल परमात्मा का नाम जपिए।

देह प्यारे। ये वार्ता सुना रहे सन सुखनंदर कौर। प्रभु दीदार दे अभिलाषी जन प्रभु दर्शना दी तंग रखते ने। राग मारू की वार दी पौड़ी विच ऐसे जिज्ञासु की मनोस्थिति का हवाला दिता गया है कि मैं प्रभु दे दर दा ढाडी प्रभु नू पौण वाले गुण गायन करता हाँ जो प्रभु नू चंगे लग जान। मेरा प्रभु अविनाशी है, सदा थिर है, बाकी दा संसार चलायमान है। प्रभु तू मैं ऐसा दान मंगदा हाँ जिस नाल तमाम भुखां दूर हो जांदियां ने। हे प्रभु जी, मैनू ऐसे दर्शन दिदारे बख्शो कि मेरा ढाडी दा मन तृप्त हो जावे। जे प्रभु तुठदा है तां आप ही पुकार करन वाले नू अपने घर बुला लैंदा है, ऐसे दीदार दिंदा है, फिर सब दुख अते भुख दूर हो जांदे ने। फिर कोई होर मंग नहीं रह जांदी, प्रभु दे चरनी लग के सब इच्छावां दी पूर्ति हुंदी है। इंज निर्गुण ढाडी नू प्रभु बख्श के कृपा करदा है अते अपने नाल मेल लैंदा है। प्रभ जीओ देवह दर्शन अपना जित ढाडी तृप्तावै, अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी कौ महल बुलावै। इस पौड़ी का गायन किया भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

प्रभु जीओ देवा दर्शन अपना जित टाडी तृप्तावे। इस शब्द गायन की तसी पाई सरबजीत सिंह ते उन्हें रागी जत्थे ने

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। छे बज रहे ने सुन दे समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब

0: विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आसिया आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

0: सुरक्षित जीवन होंगे पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना है आकाशवाणी।

0: ही गया है पल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए का डिजिटल
1: डाउनलोड वेब्स OTT ऐप नाउ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम दे 6:30 बजे ने पेशे प्रोग्राम किसान वाणी।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वीरो जे तुसी सरों सोयाबीन मूंगफली तिल सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करते हो तो तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है ऑल सीड्स किसान मित्रा। ए सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानों नू तेल बीज फसलों संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देने लई शुरू की गई है। किसान वीरो ए सेवा राही तुसी फसल दी किस्म बिजाई खादा दी वरतों सिंचाई कीड़े मकौड़िया अते बीमारी दी रोकथाम अते फसल दी सुचजी संभाल नाल संबंधित सवाल पूछ सकते हो। इसलिए अपने मोबाइल फोन विच 40 24 59 81 80 नंबर नू ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पूछो। ए सेवा किसानां नू तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है। सो किसान वीरो आधुनिक टेक्नोलॉजी नू खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 40 24 59 81 80। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर दे किसान वाणी प्रोग्राम नाल।
2: नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद किसान वीरो अते पैणो, मैं तुहाडी अपनी जसप्रीत कौर हाजिर हाँ प्रोग्राम किसान वाणी लैके। ते किसान वाणी दे विच असी तुहानू जानकारी दिंदे हाँ ओ वाली जो तुहाडे लई लाहेवंद हुंदी है। इस दे नाल ही नवीं तकनीकां दे बारे तुहानू जानकारी दिंदे हाँ ते इस दे नाल ही तुहानू दसदे हाँ कि जेकर तुसी खेती कर रहे हो ते तुहाडे लई की लाहेवंद है ते की नहीं, ते नाल दे नाल बहुत सारियां किसानां नाल संबंधित स्कीमां दे बारे भी तुहानू जाणू करवाउने हाँ। ते दोस्तों आज जड़ी स्कीम दे बारे मैं तुहानू दसन जा रही हाँ वो है PMKMY, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये छोटी अते सीमांत किसानां लई भारत सरकार दी एक पेंशन योजना है। तुहानू दस दईए कि सरकार दा मनोरथ है कि किसान जड़े ने उन्हां नू बुढ़ापे विच वी वित्तीय सुरक्षा दित्ती जावे, जिस तहत 60 साल दी उम्र तो बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन वजो किसानां दे खाते विच आउणगे। ते इस दे लई करना की है, बस 18 तो 40 साल दे किसान इस विच शामिल हो सकदे ने ते इस स्कीम दा लाभ ले सकदे हन। उन्हां ने करना कुछ भी नहीं है, बस अपनी उम्र दे हिसाब नाल हर महीने 55 तो 200 रुपए तक जमा करवाने हन अते सरकार भी बराबर योगदान पावेगी, जिस तहत 60 साल दी उम्र तो बाद तुहानू 3000 रुपए पेंशन वजो हर महीने तुहाडे खाते विच मिलणगे।
0: हाड़ी फसलां दे MSP विच वाधा, किसानां लई नवीं कीमतां दा ऐलान। हाड़ी सीजन दीआं फसलां दी बिजाई शुरू होण दे मद्देनज़र केंद्र सरकार वल्लों किसानां लई महत्वपूर्ण फैसला लैंदिआं मार्केटिंग सीजन 2027-2028 लई 6 मुख हाड़ी फसलां दे घट्टो घट समर्थन मुल यानी MSP विच वाधे नूं मंजूरी दित्ती गई है। इस फैसले नूं आर्थिक मामलिआं बारे कैबिनेट कमेटी वल्लों 30 सितंबर 2026 नूं मंजूरी दित्ती गई। सरकार मुताबिक MSP वधाउण दा मकसद किसानां नूं उन्हां दी फसल लई लाहेवंद मुल यकीनी बनाउणा ते फसली विभिन्नता नूं उत्साहित करना है। हुण गल करदे हां वख-वख हाड़ी फसलां दे नवें MSP दी। कणक दा MSP 25 रुपए वधा के 2610 रुपए प्रति क्विंटल कीता गया। जौ दा MSP 136 रुपए वधा के 2286 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। छोले लई MSP विच 83 रुपए दा वाधा कीता गया ते हुण 5958 रुपए प्रति क्विंटल होएगा। मसूर दे MSP विच सब तो महत्वपूर्ण वाधा कीता गया, जिस विच 390 रुपए प्रति क्विंटल

ते हुण वेला हो गया है खेती संदेश दा। ते अज दा खेती संदेश है पराली दे सुचजे प्रबंध लई 16,000 तो वध मशीना दी खरीद लई किसानां नूं 183 करोड़ रुपए दी सबसिडी जारी कीती गई है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे किसानां नूं पराली दे सुचजे प्रबंधन लई आधुनिक मशीनरी मुहैया करवाउण अते वातावरण पक्षी खेती नूं उत्साहित करन लई पंजाब सरकार वल्लों कीते जा रहे उपरालियां दी शलाघा करदियां पनसब दे चेयरमैन सरदार प्रभबीर सिंह बराड़ ने कहा है कि चल रहे सौनी सीजन दौरान सूबे दे किसानां वल्लों हुण तक 16,227 फसली रहन खूंद प्रबंधन यानी कि CRM मशीनां खरीदियां जा चुकियां हन। इन्हां मशीनां दी खरीद लई पंजाब सरकार वल्लों किसानां नूं 183 करोड़ रुपए दी सबसिडी जारी कीती गई है। पंजाब सरकार वातावरण दी संभाल अते किसानां नूं पराली साड़न दी बजाय विज्ञानिक ढंग नाल फसली रहन खून दा प्रबंधन करन लई लगातार उत्साहित कर रही है। सरदार प्रभबीर सिंह बराड़ ने दसिया कि CRM मशीनां दी खरीद लई व्यक्तिगत किसानां नूं 50% जबकि कस्टम हायरिंग सेंटरां यानी कि CHCs FPOs सहकारी सभावां अते ग्राम पंचायतां नूं 80% सबसिडी दित्ती जा रही है। उन्हां कहा कि सरकार दे इन्हां उपरालियां अते किसानां दे सहयोग सदका पराली साड़न दे मामलियां विच करीब 90% कमी दर्ज कीती गई है। उन्हां कहा कि पंजाब वल्लों फसली रहन खून प्रबंधन लई अपनाई गई रणनीति नूं राष्ट्रीय पद्धर उत्ते भी मानता मिली है। पनसब दे चेयरमैन ने किसान भाईचारे नूं अपील कीती है कि ओह फसली रहन खूंद नूं अग लगाउण तों गुरेज करन अते उपलब्ध मशीनरी दी वरतों करके विज्ञानक ढंग नाल पराली दा प्रबंधन करन। उन्हां कहा कि पराली दा विज्ञानक प्रबंधन करन नाल ना सिर्फ वातावरण दी रक्षा विच योगदान पवेगा सगो मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति नूं भी कायम रखण अते खेतीबाड़ी नूं लंबे समय लई टिकाऊ बनाउण विच भी मदद मिलेगी। उन्हां किसानां नूं अपील कीती है कि ओह पंजाब सरकार वल्लों मुहैया करवाई जा रही सबसिडी अते आधुनिक खेती मशीनरी दा वध तों वध लाभ लैण अते पंजाब नूं पराली साड़न तों मुक्त बनाउण लई सरकार दे यतनां विच सरगरम सहयोग देण। सो किसान वीरो अते भैणो, पराली दी सांभ संभाल संबंधी जानकारी देण तों बाद हुण वेला हो गया है तुहानूं इक अजिहे किसान वीर दे नाल जाणू करवाया जावे जिसने जैविक खेती राही नवीं पिरत पाई है अते बिल्कुल ओह अगां वधू किसान वी है अते इस किसान वीर दा नाम है सिमरनजीत सिंह। जिला फतेहगढ़ साहब दे अमलोह ब्लाक दे पिंड सलाणा जीवन सिंह वाला दा अगां वधू किसान सरदार सिमरनजीत सिंह वातावरण नूं गंदला होण तों बचाउण विच अपना शलाघा योग योगदान पा रहा है। सरदार सिमरनजीत सिंह अपने पिता दे नक्शे कदम ते चलदा होया पिता पुरखी किते नूं अग्गे वधाउंदे होए जैविक खेती दे खेतर विच नवीआं मिसालां पेश कर रहा है। तुहानूं दस दईए कि साल 2020-21 तों कृषि विज्ञान केंद्र फतेहगढ़ साहिब नाल जुड़िया एक किसान वीर खेती नाल संबंधित सिखलाईयां किसान मेलियां गोष्ठियां जागरूकता प्रोग्रामां सैमीनारां आदि विच भी भाग लैंदा रहिंदा है। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਤੇ 1121 ਕਾਲੀ ਕਣਕ ਚਪਾਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਣਕ ਸਰੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹਲਦੀ ਮੂੰਗੀ ਮਾਂ ਛੋਲੇ ਕੰਗਣੀ ਕੋਧਰਾ ਪਿਆਜ ਜੌ ਸਿੱਟੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਨੇਪੀਅਰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਕਿਸਮ GSC 7 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਹਲਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਗੰਧ ਹਲਦੀ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੈਵਿਕ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂੜੀ ਅਤੇ

0: अपनी तैयार कीती हुई गंडोयां दी खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट उत्ते भरोसा करता है। एक किसान भूमि दा जैविक मादा वधाउण लई मूंगी अते जंतर वर्गियां फसलां नूं हरी खाद वजों वरतदा है। फसलां नूं कीड़े मकौड़ियां तों बचाउण लई खट्टी लस्सी, फटकड़ी, सरों दी खल, निम दे पत्ते, दस पत्री अते ट्रैप आदि नूं वरतों विच लियांदा है अते बीमारियां दे हमले तों फसलां नूं बचाउण लई निम दा तेल, जीव अमृत वर्गे देसी नुस्खे वरतदा है अते नदीना दी रोकथाम लई गुडाई करदा है। और यही नहीं, सरदार सिमरनजीत सिंह नूं अपने तैयार कीते हुए जैविक उत्पादां जिवें कि हल्दी पाउडर, बासमती चौल, मल्टीग्रेन आटा, मूंगी दाल, सरों दा तेल, तिल, कोदरा ते वर्मी कंपोस्ट आदि मंडी करन लई दूर दुराडे मंडियां जां बाजारां विच नहीं जाना पैंदा, सगों उस दे घर जां फार्म तों ही इह चंगी कीमत ते हत्थो हत्थ विक जांदे हन। सो किसान वीरो अते भैणो, अज इह किसान वीर जिले दे होरना किसान वीरां नूं वी खेती विच वातावरण पक्षी तकनीकां अपनाउण लई उत्साहित कर रिहा है।
1: हाड़ी फसलां दे MSP विच वाधा, किसानां लई नवीं कीमतां दा ऐलान। हाड़ी सीजन दीआं फसलां दी बिजाई शुरू होण दे मद्देनज़र केंद्र सरकार वल्लों किसानां लई महत्वपूर्ण फैसला लैंदिआं मार्केटिंग सीजन 2027-2028 लई 6 मुख हाड़ी फसलां दे घट्टो घट समर्थन मुल यानी MSP विच वाधे नूं मंजूरी दित्ती गई है। इस फैसले नूं आर्थिक मामलिआं बारे कैबिनेट कमेटी वल्लों 30 सितंबर 2026 नूं मंजूरी दित्ती गई। सरकार मुताबिक MSP वधाउण दा मकसद किसानां नूं उन्हां दी फसल लई लाहेवंद मुल यकीनी बनाउणा ते फसली विभिन्नता नूं उत्साहित करना है। हुण गल करदे हां वख-वख हाड़ी फसलां दे नवें MSP दी। कणक दा MSP 25 रुपए वधा के 2610 रुपए प्रति क्विंटल कीता गया है। जौं दा MSP 136 रुपए वधा के 2286 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। छोले लई MSP विच 83 रुपए दा वाधा कीता गया ते हुण इह 5958 रुपए प्रति क्विंटल होएगा। मसूर दे MSP विच सब तो महत्वपूर्ण वाधा कीता गया जिस विच 390 रुपए प्रति क्विंटल दा वाधा करके MSP 7390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया। इसे तरह रेपसीड ते सरों दा MSP 413 रुपए वधा के 6613 रुपए प्रति क्विंटल कीता गया, जबकि कुसुंब दे MSP विच सब तो वध 675 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया गया ते नवा MSP 7215 रुपए प्रति क्विंटल होएगा। पंजाब विच हाड़ी सीजन के दौरान कणक की काश्त वड्डे पद्धर ते की जाती है, इसे करके कणक का MSP पंजाब के किसानों लई विशेष महत्ता रखता है। इस दे नाल ही सरों, दालां ते होर हाड़ी फसलां वल किसानां नूं उत्साहित करना फसली विभिन्नता दे पक्खों भी महत्वपूर्ण।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: मिट्टी नाल प्यार दी परंपरा है, परंपरागत खेती।
1: किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम को दिशा दी है।

0: और जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बल और गति प्रदान की है। आज जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में हमारा विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे विविध और विस्तृत देश को आपस में जोड़ने, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने और देश के हर क्षेत्र हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूलभूत ढांचे के विकास में हुई तेज प्रगति के लिए पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल छिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: नमस्कार।
0: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं पीएम गति शक्ति पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डा अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना अलग अलग और आपसी समन्वय के बिना बनाई जाए तो परियोजनाओं के बीच तालमेल की कमी और कनेक्टिविटी में अंतर जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करना और सड़क, रेल, बंदरगाह, जल मार्ग, बिजली, दूर संचार तथा अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत जियो स्पेशल डेटा, जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को किसी परियोजना की योजना बनाते समय मौजूदा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और संभावित बाधाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। अगस्त 2026 तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका था और 3291 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इसका एक अहम हिस्सा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG या केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि योजना के स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विभिन्न परियोजनाओं के बीच तालमेल और डेटा आधारित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे में भी पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों का इस्तेमाल परियोजना नियोजन में किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे की 300 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनकी कुल लंबाई लगभग 13,808 किलोमीटर थी। इनमें 51 नई रेल लाइंस, 17 गेज कन्वर्जन और 232 डबलिंग परियोजनाएं शामिल थी। इस तरह पीएम गति शक्ति का मूल विचार है अलग अलग परियोजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को एक साथ देखकर योजना बनाना।
0: ये कहें कि प्रेरणात्मक अवसर है और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह से वहां पर समृद्धि आई वो सबके सामने सर्वविदित है और उसी लय में जिस तरह से उन्होंने मूलभूत ढांचे के विकास को हमारे देश में गति दी है पिछले 12 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं सुविमल जी?
3: आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सार्वजनिक जीवन में 25 साल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया हुआ है और विशेषकर मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आया है पिछले 12 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व में एक हताश होते थे कि हम जो मेन स्ट्रीम शब्द यूज होता है इस्तेमाल जो होता है उसमें वो जोड़े नहीं है, वो किसी तरीका से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास रहे सारे उत्तर पूर्व में सड़क से जोड़ना, हवाई अड्डों नया बनाना, रेलवे को आगे ले जाना, कितने सारे राज्यों में रेलवे नेटवर्क के ये कई सालों में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ गवर्नेंस होता है इसका बड़ा प्रतीक है और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल में यह दर्शाता है कि लोगों को जोड़ने के लिए आज जो हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी का महत्व बड़ा भूमिका होता है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से 2014 में अगर आप चाहते हैं तो देखते थे कि क्वालिटी जो बैंडविड्थ का भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता था आज हर जगह अरुणाचल जाइए या त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं। मैंने तो एक बार बजट का आधा घंटा पूरा डिबेट पहाड़ के ऊपर बैठ के नेटवर्क से यूज किया। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कामयाबी रहा उत्तर पूर्व को कम समय में जोड़ने के लिए।
0: अनिल जी आपके पास आते हैं, जैसा सुविमल जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को बहुत

0: बल दिया है प्रेजेंट सरकार ने, और खासकर ऐसे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो पहले मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े माने जाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया है। अगर हम जो पैन इंडिया जो स्कीम लाई गई कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है सरकार का, जिसमें इतने सारे विभाग, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका परम उद्देश्य आप क्या मानते हैं, इसको कितना क्रांतिकारी मानते हैं?
1: सबसे पहले मेरा श्रोतागण को नमस्कार। और जहां तक पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट पिछले 5-4 साल से शुरू हुआ है, तो इसमें देखा है कि एक क्रांति है। इसमें क्या है कि अभी तक सब अलग अलग साइलोज में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, और हमारे देश में हाईवेज हमने बनाए हैं और अच्छे हाईवे बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो भी हमारी एफिशिएंसी उसकी नहीं मिलेगी। अब हमारा देश का जो अगर देखा जाएगा, अब तो नहीं रहा, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में होता था और वो 14% से के अबव था, लेकिन आज वो घटकर जो हर साल 2% से ज्यादा घट रहा है, इससे और भी ज्यादा घटेगा। जो इसका टारगेट है वो 6% तक लाना है, तो 6% तक लाने के लिए हमारे को हाईवेज जो थे वो स्टैटिक थे, अब वो डायनेमिक बने। डायनेमिक में का मतलब हुआ कि उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन किया, यानी कि अगर हमारी एक वायबिलिटी, सपोज हमारे को 2000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अलग अलग ट्रक्स लोड को लेके जाएंगे, अभी भी हमारा जो ट्रक का लोड है वो 80% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देश में है, लेकिन जिस टाइम ये मल्टी मॉडलर हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो 20% जो गुड्स का है तो वो शेयर बढ़कर 40% हो जाए, और 40% होते ही हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हो सकता है अभी 1 या 2 साल में हम 9% से कम भी ले आएंगे। और इसमें हमारे को जो भी उसमें हाईवेज की एमिनिटीज बनाना है, इंटरचेंज पॉइंट बनाना है, हमारे को उसकी कनेक्टिविटी के साथ में जीआईएस की जरूरत है, हमारे को टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है, और जो हमारे को एक ड्राइवर्स का जैसे पूल की जरूरत है, और लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो इस सबका इंटीग्रेटेड हाईवेज की एमिनिटीज और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पूरे देश में जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में हमारा देश, मैं आपको आज इस चैनल के थ्रू एक उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को जो पीएम गति शक्ति है, वर्ल्ड लर्न करेगा, सीखेगा।
0: सुबिबल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको, इनलैंड वाटरवेज, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है, और ताकि बिल्कुल निर्बाध कनेक्टिविटी हो लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ये किस तरह से आपको ये अप्रोच जरूरी लगता है अभी की जरूरतों के लिए, और हमारे इकोनॉमी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
2: सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास रहे, और अभी अनिल साहब ने भी ये बताया कि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके जितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उनको जोड़ा जा रहा है, और किस तरीका से हम ये जो नेटवर्क्स है इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको किस तरीका से संतुलित रूप से अपने जो रिसोर्सेस भी रहते हैं उसको भी हम उसी हिसाब से खर्च करें। तो हम अगर देखें तो इससे समय भी कम लगेगा प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा भी कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी जिस मात्रा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे देश में ली है, अगर आप देखें गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में करीब 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया था, और करीब 19 लाख करोड़ का जो प्रावधान था उनके लिए, उसमें से करीब 250 ऑलरेडी सैंक्शनड है और 200 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब एक कॉमन अप्रोच आप लेते हैं और जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये देश के लिए बहुत फायदा होता है। और यही प्रयास से आज जब टेक्नोलॉजी हर तरीका हर क्षेत्र में मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी, कनेक्टिविटी में भी, लास्ट माइल में भी, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है कनेक्टिविटी का, तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कामयाबी है।
0: एक और एस्पेक्ट है जो हमने इन 12 वर्षों में देखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टैब्लिश हुए हैं और बहुत दुर्गम जगहों पर इस्टैब्लिश हुए हैं। जो एक प्राइम एग्जांपल है अटल टनल, अटल टनल को अनिल जी अगर हम आपके पास आए, किस तरह से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल

0: है 10,000 फीट से ऊपर, और जिस तरह का ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
1: मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम चाहे वो हिमाचल से जाना होता था लद्दाख को, और केलोंग जैसे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट

0: था हिमाचल प्रदेश में, और मुझे पता था कि मनाली से केलोंग जाने में पूरा एक दिन लगता था, और एक दिन लगने की वजह से वहाँ का जो सब्जियाँ थी, वहाँ का जो और रॉ मटेरियल जो सप्लाईज होनी होती थी, तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती थी, और उसमें लैंडस्लाइड होता था। और जो अब जब से ये सोलंग नाला से हमारी कनेक्टिविटी बनी है, तो आज 3 घंटे में पहुँचते हैं, यानी कि जो 12 घंटे का जो ट्रेवल था वो 9 घंटे हमारे बच गए, और कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना कम हुआ। और फिर क्या था कि आप मनाली के बाद आगे कोई टूरिज्म नहीं था, आज अटल टनल ने एक ऐसा टूरिज्म का रास्ता खोला है कि जो लद्दाख, जो ऐसा लगता था कि आप बाय रोड पता नहीं कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सेफ पहुंचेंगे या नहीं, और आज लद्दाख की कनेक्टिविटी हमारी इतनी आसान हो गई है कि कुछ लगता ही नहीं है कितनी जल्दी वहां पहुंच गए हैं। और डेवलपमेंट उस एरिया का, केलोंग जो बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र था, आज वहां पर वी आर फाइंडिंग बेटर होटल देन मनाली। तो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है,
1: 6 महीने के लिए बंद हो जाता था रोहतांग पास, उसको ओवरकम किया है और कनेक्टिविटी निर्बाध बनी हुई।
0: यस, अब रोहतांग पास तो बाईपास हो चुका है, तो नीचे से टनल जा रही है, अब जिसको रोहतांग जाना है जाए, अदरवाइज पहले तो इट वाज फोर्सिबली गोइंग ओवर देयर, तो वो सारी चीजें बंद है।
1: तो सुबिमल जी, सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सेला टनल जो 2024 में शुरू हुई, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं वहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहाँ की इकोनॉमी के लिए और वहाँ के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेला टनल पृथ्वी की सबसे लंबी बाईलैंड टनल है, और ये ऑल वेदर रोड है तवांग, तो हमारा तवांग के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर सारे सीजन्स में अवेलेबल है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात ये है कि एक अरुणाचल में ये दो जो ट्विन टनल्स है, ये सेला टनल एक एक किलोमीटर की है और एक 1.5 किलोमीटर की करीब, इससे थोड़ा ज्यादा है, 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, इस तरीके का कैपेबिलिटी जो आज हमारे पास है और ऑल वेदर रोड बनाने का, तो अरुणाचल का कनेक्टिविटी, अरुणाचल का सिक्योरिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्व है। और आज साल भर लोग उससे आगे जा रहे हैं, तवांग का एक टूरिस्ट वैल्यू भी है और सिक्योरिटी वैल्यू भी है, तो ये दोनों जो टूरिस्ट का इनफ्लो, हालांकि वेदर के हिसाब से कुछ सीजन्स होते हैं टूरिस्ट के, लेकिन साल भर में लोग का आना जाना है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाबी है, क्योंकि इससे और कई सारे उस तरफ और कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे फीडर रोड्स ये जितने हो रहे वो भी एक्टिव होते जा रहे हैं, तो अरुणाचल के और बॉर्डर कनेक्टिविटी विशेषकर बहुत आगे बढ़ रहा है इससे।
1: इसके अलावा अभी आप जो थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से पीएम डिवाइन जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आए हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 3,746 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जिसमें से 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये पूरा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज बढ़े हैं, इससे आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ कहें कि मेन स्ट्रीम से जुड़ गया, बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनने का उसमें पोटेंशियल है पूरे भारत के लिए?
2: बिल्कुल बने रहा है। आपने डोनर मिनिस्ट्री का जिक्र किया, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के अलावा भी एक प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार की 54 मिनिस्ट्री की मिनिमम 10% एक्सपेंडिचर इनको नॉर्थ ईस्ट में करना होता है, और ये जो आपकी फंडिंग इनकी तरफ से गए तो हर क्षेत्र में, हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हुए। दूसरी बात आते है कि ये जितने पैसा देते हैं तो उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है, वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ये एक जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं आता है तो आगे का हिस्सा भी नहीं जाता है। तो डोनर मिनिस्ट्री का जो अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कुछ कर रहा है, या निरामेक जैसा संस्थान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास रहे कि एक्सपेंशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लाए, तो हमारा जो रिसोर्स स्पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है अभी, या रेल का वहां जो निर्माण हुआ है, इस साल की मैं बता सकता हूँ कि अभी 96% रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं। जब 2014 में सरकार आए थे प्रधानमंत्री की, तब नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवेज थे, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेन ब्रॉडगेज कन्वर्शन काम चल रहे थे, एक

0: लमडिंग सिलचर का एक 196 किलोमीटर जैसे वो 16 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था
1: जी,
0: और प्रधानमंत्री मोदी आने के साथ साथ एक साल में उसको कंप्लीट करके 2016 से वहां से ट्रेन जाता है। उस कनेक्टिविटी के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारत की रेलवे नेटवर्क में जुड़ गए। दूसरी बात, अगर आप हाईवे की वो ले तो वहां सिर्फ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई, यानी कि 61% ग्रोथ रहे है इन कई सालों में। और सड़क की क्वालिटी भी बहुत अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूमते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ सड़क में जब जाते हैं लगते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाफलोंग सिलचर जो सिर्फ 100 किलोमीटर की रोड है, आज पिछले 20 साल से अब 6 घंटा से कम में उससे जा नहीं सकते। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे खराब थे, पिछले 2 महीना से आप उस स्ट्रेच को 1.5 घंटा में क्रॉस कर रहे, तो कितना फर्क पड़ रहा है
1: आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, फार्मर्स के लिए,
0: इसीलिए
1: टूरिज्म के लिए,
0: हाँ, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट में निकल के आ रहे हैं इसी की कनेक्टिविटी करके, क्योंकि वो गांव से हाईवे तक आ पा रहे हैं और इसके बाद आगे मूवमेंट कर रहे हैं और आगे अपना प्रोड्यूस कहीं बेच के या कहीं जमा दे के अगर वापस फिर सेम डे में जा सकता है तो उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन की तरह होता है, मोटिवेशन। बहुत सारे नए फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू हुए हैं, बिटलनाट के लोकल फार्मिंग, बंबू की लॉट ऑफ नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं। तो
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल शिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। और अब अनिल जी, जैसा भी सुविमल जी जिक्र कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक किया है इस सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो शुरू हो गए थे लेकिन वो लंबित थे। इवन अटल टनल की जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले उसका 300 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2040 तक जाकर वो समाप्त होती, और अब इन्होंने 1400 मीटर्स पर ईयर के गति से उसको बनाकर 2020 में जो कंप्लीट किया। आपको लगता है कि ये फास्ट ट्रैकिंग एंड टाइमली डिलीवरी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है इस सरकार का?
2: जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो पहले प्रोजेक्ट तो ये पहले का ही था
1: जी,
2: मुझे लग रहा है कि ये 2005 या 2006 से ये शुरू हो चुका था, उससे भी पल के पहले। तो उस टाइम में एक जो एक मोटिवेशन, एक ड्राइव, जो एक एंथुसियाज्म हमारे जो वर्कफोर्स में होने की जरूरत थी वो नहीं था। अभी आपने हाफलोंग की बात की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया तो मुझे बताया गया कि आप उस स्ट्रेच से ना जाएं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस ये वजह थी। और इसी तरह से जो और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट से जैसे ये बोगीबिल ब्रिज बना, अब हमारे जो प्रोजेक्ट में गति जो आ रही है वो एक उस पावर के साथ में आ रही है कि सरकार की एक बैकिंग है, सरकार का एक मोटिवेशन है। वो जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट को बिफोर शेड्यूल लेके आ रहा है और हम वी आर क्रिएटिंग वंडर्स। तो ये सरकार का एक फर्क आया है और हमें देखने का महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो पिछले 40 साल से ज्यादा मैं सरकार में काम करता रहा था और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट चाहे वो मैं दिल्ली सरकार से और जो भारत सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट्स में थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में मैं पहले से ही एसोसिएटेड था। अब एक जैसे एक हमारे सिलचर में एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि सुनील साहब ने बताया कि वहाँ के लोगों को एक नया, जो चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी बन के आ रहे हैं, तो उसके साथ में एक हमारा वहाँ पर सिलचर में एक प्रोजेक्ट जो था वो इट वॉज डेड प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट अभी पिछले 3 साल से आईकैट ने सिलचर में लिया है एंड वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ ड्राइवर्स ओवर देयर, वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ टेक्नीशियंस सो दैट अवर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो एक फास्ट ट्रैक पर एक चेंज ओवर आया है, तो और वो सिलचर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर फॉर मिजोरम, इवन मणिपुर, असम के साथ में मेघालय, तो ये सबको मिला के वो जो एक हब बनेगा, तो वहां पर हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड जो विजन असम सरकार का और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि वहां का जो ड्राइवर्स है नॉट ओनली टू सर्व द कंट्री बट अब्रॉड ऑल्सो। तो ये वाले सारे चीजें जो एक चेंज पूरे एंथुसियाज्म पूरे लोगों में आया है, तो इट इज वंडरफुल। अनइमेजिनेबल।
1: जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और इस जोश की वजह से हम रेलवेज में भी देख रहे हैं कि ट्रैक रिन्यूअल और स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें गति बहुत है। वंदे भारत ट्रेन ने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रेन ट्रैवल को। एक और चीज 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की भी बात है और सुबिमल जी 1000

0: 674 लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में, तो आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का असर भी हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं?
1: जी, जो प्रयास रहा कि एक मेक इन इंडिया और दूसरा इंडिजनाइजेशन, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाए वहां भी ये प्रयास हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो सामान लगते हैं राउटर से लेके सब कुछ वो भी लोकल प्रोडक्ट है, और रेलवे लोकोमोटिव्स, रेलवे कोचेस, रेलवे ट्रैक्स, हर में जो R&D की प्रयास होके लोकल प्रोडक्ट्स बन रहा है, लोकल सप्लाई चेन की जो नेटवर्क बनाया जा रहा है, उससे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कम समय में और जिस तरीके से हमें रेलवे की एक्सपेंशन प्लान्स है। अब मैं फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट का भी उदाहरण देता हूँ, इस साल नॉर्थ ईस्ट की बजट रेलवेज की करीब 11,500 करोड़ रुपया के है, तो वहाँ जिस तरीका से आज ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, क्योंकि हर सारे राज्य में सबका डिमांड बढ़ते रहता है, नॉर्थ एक रेलवे एक पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट रहता है और लोगों का कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की बात की, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेन जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक वाइब्रेंट सेक्टर रेलवेज में देखा जा रहा है, उसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी सप्लाई चेन में आ रहा है, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जरूर हो रहा है, लेकिन और एक बड़ी बात है कि जो पहले नौजवान को मौका नहीं था और बहुत समय वो हथियार भी ले, आज वो नहीं हो रहा है, आज वो सामने आ रहा है
0: जी,
1: तो उससे समाज में भी एक बड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
0: तो इसी संदर्भ में जो नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्ड्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं पिछले 12 वर्षों में, वो भी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है?
1: बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से आए तब से वन ट्रैक एफर्ट से ये प्रयास रहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है, देखिए उनके कुछ खौफ थे बहुत सालों से और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाए है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उत्तर पूर्व को शांत रखना है, उत्तर पूर्व में उन्नति होना है, तो इनको फर्स्ट बिठा के बात करो क्या प्रॉब्लम्स है। और मैं कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब यहाँ आते थे बात करते थे, इसके बाद बड़ा खुश होके वापस जाते थे कि एक इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहे थे, उससे और अलग उग्रवादी ग्रुप को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई सुनते। बट सबसे बड़े बात ये है कि जो इनको वादा किया जाता है कि आपका सेटलमेंट के हिसाब से आपका रिहेबिलिटेशन कैडेट्स के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इनको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये सारा वादा टाइम बाउंड मैनर में होता है और गृह मंत्री जी की वहां से ये मॉनिटर होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस बहुत है। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे जो सेटलमेंट हुए, ये जो बड़ा सेटलमेंट हुए पिछले 2019 से, उनमें से बहुत लोग सार्वजनिक जीवन में भी आए, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं, तो ऐसे समाज की भी फायदा हुआ और जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां होता था वो आज वो नहीं है।
0: और अनिल जी, अगर हम आपने वाइब्रेंट वर्ड यूज किया अभी सुविमल जी, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो शुरू किया वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत जो सीमा के पास जो गांव है उनको पहले कहा जाता था लास्ट विलेज, अब कहते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, और जिस तरह का उनके लिए प्रोविजन है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे आईज और ईयर्स है, कितना बड़ी बात है ये एक एटीट्यूड चेंज में भी और वहाँ के विकास के लिए।
2: बिल्कुल, और इसके लिए हमारा जो आर्मी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनका टूरिज्म, तो उनके टूरिज्म में क्योंकि एक सेफ्टी की बात होती है, तो उसके लिए जब सेना हमारी उसको एक जिम्मेवारी लेती है, तो आज की तारीख में हम देखेंगे जो नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन हमारी जो शिमला मनाली नहीं जा रहा, वो बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, वो उनके लिए आज जिसको आपने बताया ना कि फर्स्ट विलेज, तो वो फर्स्ट विलेज पे हर जो चाहे वो यंग या जेंजी जिसको हम बात कहें, तो जेंजी अपने आके ये बताता है कि जी मैं इस स्टेट के इस फर्स्ट विलेज पे गया, जो दूसरा वो कहता है अच्छा तुम वहां गए तो मैं और उससे एक्सट्रीम जगह पे जा रहा हूँ, तो ये एक जो कॉम्पिटिशन चला है इससे अब वो जो उन विलेजेस में ना तो वहां पर पहले एजुकेशन थी, ना वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप था, या कोई किसी तरह की और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अब टूरिज्म ने उनको इन हाउस अपॉर्चुनिटी दी है, एंड दे आर मेकिंग गुड सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर टाइप, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह के मोटल्स बनाते हैं, तो उन लोगों ने अपने हॉस्पिटलिटी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है, और जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर विलेजेस है दे आर मोर टूरिज्म स्पॉट देन द सिटीज ऑफ देयर कैपिटल।
0: बिल्कुल, एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कनेक्टिविटी की हम जैसे बात

0: कर रहे हैं, जो हाईवेज में इतनी ज्यादा गति से बढ़े हैं, अगर हम देखें तो 61% के करीब बढ़ गए हैं जब 2014 और मार्च 2006 के बीच, अब लगभग 1500 किलोमीटर के हमारे हाईवेज हैं, और 4 लेन जो हाईवेज है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला जो परियोजना है, कैसे देखते हैं आप इस कहें कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर इतना जो बल दिया जा रहा है ताकि पूरा देश आपस में जुड़ पाए?
1: देखिए, ये रोड कनेक्टिविटी वाजपेयी जी की समय से एक मैं कहता हूँ बड़ा फोकस्ड एरिया रहा बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, और उस समय जितने हुए अभी मोदी सरकार के टाइम में ये और गति से ये काम हुआ है। और रोड की लेंथ के अलावा क्वालिटी ऑफ द रोड, जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रहे हैं वो बड़ा उसमें भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो एक हाई स्पीड रोड्स आपको क्वालिटी रोड्स चाहिए होता है, लेन्स ज्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम बढ़ गए तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हर कॉरिडोर्स जो बने हैं लोगों में एक गाड़ी लेके सड़क में जाना देश भर में, ये कमी देखो दिल्ली बॉम्बे में आजकल बहुत लोग चले जाते हैं चला के, क्योंकि एक तो थ्रिल फैक्टर होता है कि रोड सही है, लेकिन साथ साथ में जो बिजनेस भी होते हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बीच में, जो अलग अलग शहर या गांव में भी लोग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी रहता है कि इस क्षेत्र में। और एक बात जो मैं देखता हूँ, जो रोड की हाईवेज की जो मेंटेनेंस है उसमें भी बहुत सुधार आए। पहले अब जो जिस स्पीड में ये रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते थे आज वो बहुत जल्दी होते, तो मतलब ओवरऑल एक रोड क्षेत्र में और सेफ्टी को नजर में रखते हुए तो एक प्रयास रहे
0: है। सो इससे आपको लगता है कि जो नए नए इंडस्ट्रीज है, जैसे सरकार हमेशा छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत आसान होता है अपना सामान, या इवन फैक्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुंचे, सप्लायर्स तक पहुंचे, तो बहुत सहूलियत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी।
1: जहां रेल नहीं है या बहुत जगह जहां रेल भी है वहां रोड नेटवर्क्स की इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम देखे हैं कि और बहुत दूर दुरुस्त इलाके के लोग भी आज एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं और बाहर आके अपने सामान दे पा रहे हैं, या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए भी इनके मटेरियल्स भी मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये टू वे ट्रैफिक रोड क्षेत्र में उन्नति के लिए हो रहे हैं।
0: एक और जो बहुत फ्लैगशिप कहें कि जो स्कीम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है एस्टेब्लिशमेंट, वो है चनाब अंजी खांड रेल लिंक जो हिमालयाज में बना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? विश्व का कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है चनाब, कितना ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, हमारी सरकार के लिए।
2: जब से ये कनेक्टिविटी हमारा श्रीनगर के साथ में बना है तो ये अब मात्र 4 घंटे का, कटरा से 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं जहां पर 12 घंटे लगते थे। और जब इसका जो आर्क ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कि सपनों की दुनिया में, और उसके अंदर उसमें जब ट्रेन गुजरती है और जो उसके पैसेंजर्स जब वो सीनरी देखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रेलवे लाइन दिखती तो नहीं है नीचे से, तो उसको दिखता है कि नीचे एक नदी बह रही है और आप हवा में है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रिज की तरह से है, और नीचे उसका आर्क तो हमारे को एरियल व्यू से दिखता है, बट वो ऐसा दिखता है कि मैं पहाड़ों में कहां पर पहुंचा हूं। ये ऐसा सीन तो ना कोई सड़क है ना कुछ, आप पहाड़ के बीच में से और एक कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है तो उसके बीच में आप निकल के जा रहे हो, और तो वो देखने में ऐसा लगता है कि रमणीय है। हमेशा सेब के सीजन में श्रीनगर में बारिश आती थी जिसकी वजह से वहां पर काफी जो सड़ जाता था उनका मटेरियल, और अब वो जो है अगर वो बारिश आएगी बट वो जो गुड्स ट्रेन्स के थ्रू इसको फ्रेट को लेके आएंगे, और तो हमारी सप्लाईज मेंटेन रहेगी और वहाँ के फार्मर्स को बारिश का नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अंश है जो कि हमने इतने सालों में सोचा भी नहीं था, वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी।
0: बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, 260 किलोमीटर पर आवर तक की हवा को वो रिजिस्ट कर सकता है, और जो अंजी खाड ब्रिज है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन में ही पड़ता है, वो अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकता है, और वो भी फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। सो आपको लगता है कि ये सब हमारा एक शोकेस करते हैं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक क्षमता है, एक बढ़ती मजबूती है पूरे विश्व में भी?
2: यस, अभी क्या था कि जो वंदे भारत का जो इस ब्रिज के सिबुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, तो तब उन्होंने

0: आया था कि ये अर्थक्वेक के साथ में इसके ऊपर हमारा, बोले जी हमारे पास इतना इंतजाम है कि वो उस चीज के लिए भी हमने सेफ्टी का ध्यान रखा है, जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह और इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये सारी चीजें हैं, तो हमारी सेफ्टी इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द पुलिस एंड डिफेंस फॉर दिस ब्रिज ऑल्सो अलॉन्ग विद द आइकॉनिक व्यू ऑफ दिस ब्रिज।
1: सुबिमल जी, आपके पास आते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट पूरे हमारे देश से जुड़ गया है, जिससे उनके व्यापार को फायदा होता है, आवाजाही में फायदा होता है, टूरिज्म को फायदा होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ भी एक जो जुड़ाव है वो अब संभव हो पा रहा है।
2: बिल्कुल हो पा रहा है, हो भी रहा है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार की है उस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य को अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, वहाँ की एक बड़ा स्पेशल हल्दी है, मिजोरम की जिंजर, सिक्किम की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नागालैंड की कॉफी, इसमें प्राथमिकता देके, फंडिंग देके, उसमें R&D करके लिंकेजेस कैसे आगे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते हैं, इसमें बहुत प्रयास रहा। इसमें जो अब नए सारे एंटरप्रेनर्स ये सारे क्षेत्र में इन राज्यों से आ रहे हैं, इनके साथ साथ किस तरीके से राइस प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, अभी थाईलैंड से एक एडुकेशन की कोऑपरेशन के लिए गुवाहाटी और शिलोंग में पिछले हफ्ते बड़े एक डेलीगेशन आए थे वहां की यूनिवर्सिटीज की, तो इस तरीका से जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रयास हो रहे।
1: क्या देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से जुड़ाव का पूरा, जैसा आपने वर्ड यूज किया कि जोश के साथ जो ये कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि यही नींव होगी विकसित भारत की, इसके बल पर ही हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक?
0: पहले उन लोगों का, जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, तो उनको हमारा देश भारत एक अलग देश लगता था, और आज वो लोग प्राउडली लीड करते हैं कि ये देश हमारा है। तो ये वाला चीज का जो चेंज मैंने जो देखा है, तो यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन यूनाइटेडली से विकसित भारत।
1: सुबिमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ये कहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयास रहे, इसके साथ साथ और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूर दराज इलाका में वो पेमेंट कर पा रहे, फिर साथ साथ में आपके आधार के जो ऑथेंटिकेशन, इनसे इन लोगों का बीच में एक एम्पावरमेंट की सेंस आती है कि हम भी सबके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जो प्रयास रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से,
1: और गवर्नमेंट स्कीम्स भी, वेलफेयर जो है वो पहुंच पाया है
2: बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई मिडिलमैन नहीं है, और इसके साथ साथ जो लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस आया है, मैं समझता हूँ ये जो 25 साल प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस इकोसिस्टम में रहे, उससे कोशिश है हम सब एक साथ मिलकर कामयाबी करेंगे।
1: अनिल जी, सुबिमल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने प्रकाश डाला कि किन विभिन्न तरीकों से पूरा भारत अब आपस में जुड़ रहा है।
0: धन्यवाद। धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: जन सेवा से देश सेवा, हुण तुसीं सुन रहे सी साडे दिल्ली केंद्र तों ए प्रोग्राम। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। साड़ा अगला प्रोग्राम है साहित्य सुधा। आज इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे डॉक्टर मीनू तलवार होरां दी वार्ता संस्कृत साहित्य विच नौ ग्रह पूजन।
5: भारतीय संस्कृति विच नवग्रह उपासना दा उन्ना ही महत्व है जिन्ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश या किसी होर देवी देवते दी उपासना दा महत्व है। सौरमंडल एक रहस्यमय गुत्थी है ते हर दिन विज्ञान और वैज्ञानिक इस तो जुड़ियां नवीं जानकारियां हासिल करते हैं।

तुम बिन कहीं करार ना आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं। गजल दे बोल सन, आवाज़ सी चंदन दास सुना दी। अगली आवाज़

0: निकाह फिल्म लयकीत सी आवाज़ सी महेंद्र कपूर दी असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
1: मिठा करन लगे हो
2: नौकरी लागे लगदी है मुबारका फेरते पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही जे कही है तो फिर जागरूक बनो ध्यान रखो क्योंकि

0: नमस्कार, राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति विचार चर्चा विच आप सब स्रोतियां दा स्वागत है। भारत सरकार वल्लों नैशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे विच लागू कीती गई सी अज तो 6 साल पहलां। आपां उस दे वख-वख पहलुआं बारे जिक्र करांगे कि नवीं पीढ़ी नूं लै के ओह किस तरीके नाल लाहेवंद है ते नवीं पीढ़ी इस दा किस तरीके नाल फायदा उठा सकदी है ते आउण वाले सालां विच 2040 तक 2060 तक इह कित्थों तक लाहेवंद है, आपां इस बारे अज गल्लबात करांगे। मैं हां तजिंदर कौर थिन, सीनियर रिपोर्टर, ते इस विषय ते गल्ल बात करने लिए स्टूडियो विच मौजूद ने डीएवी कॉलेज जलंधर दे प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप वत्स। सर, तुहाडा इस विचार चर्चा विच बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: सर, जिस तरह के तुहानू भी पता है, अपने स्रोतियां नू भी पता है कि 6 साल पहला ये नीति लागू की गई सी। पहला तो आप अपने स्रोतियां नू दसिए कि यह नवी सिक्ख्या नीति जो 34 साल बाद लागू हुई वह की चीज है।
1: मैं इस गल दे वास्ते आकाशवाणी का विशेष धन्यवाद करना चाहना कि एक बहुत ही लाहेवंद सिरलेख के उपर असी अज गल कर रहे हैं, जिदा कि अज भारत दे विच नहीं बल्कि भारत तो बाहर भी बहुत चर्चा हो रही है। जे भारत दे इतिहास की गल करिए, सिक्ख्या दे इतिहास की गल कर दिए, खास करके आजादी तो बाद दे भारत दे विच, ते 1968 दे विच पहली सिक्ख्या नीति आई सी, और उदे बाद 18 साल दे बाद 1986 दे बाद दूजी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति आई। और उस टाइम ये आम एक गल चलती सी कि अगली नीति शायद हुण 18-36 साल बाद आऊगी, मजाक दे तौर ते आम तौर ते कहा जांदा, लेकिन वो गल लगभग सच हो गई कि जब 1986 तो बाद 2020 34 साल लग गए, 36 तो नहीं लगे लेकिन 34 साल लग गए लगभग, और राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति है उहदे विच थोड़ा थोड़ा कितने चेंज आया, 1992 दे विच थोड़ा जिहा अमेंडमेंट हुई या 2009 दे विच राइट टू एजुकेशन एक्ट बनिया, लेकिन जिहड़ी 2020 दे विच सिक्ख्या नीति आई एक बहुत ही लाहेवंद बहुत ही वैल रिसर्च डाकूमेंट है जिन्हों हिंदुस्तान दे लोड़ां दे अनुसार बनाया गया है। और नाल ही नाल क्योंकि वैश्वीकरण का जमाना है कि इस सिक्ख्या नीति दे पास किए बच्चे जिहड़े आ पूरी दुनिया दे विच समय दे हानी बन सकन, वो सारी चीज़ां का ख्याल रख के इन्हूं बनाया गया। और 2015 दे विच प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 5 साल इस डाकूमेंट नूं बनाने वास्ते लगे, और 5 साल दे सफर दे दौरान समाज दे हर तबके तो उहदी इनपुट्स लैके इस नूं बनाया गया। और जिहड़ा यूएन उहदा जिहड़े सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने वो 40 तक जिहड़े अचीव करने ने, उहदे विच सिक्ख्या दा जिहड़ा कंपोनेंट है वह भी इस नीति नूं बनाने समय उहदा ध्यान रखा गया। कहन दा भाव है कि नीति ये बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, बहुत नीड बेस्ड बनाई गई है, और फ्यूचरिस्टिक विजन है इहदे विच कि आने वाले जिहड़ा तुसीं कीती 2040-2060 कि आने वाले कई वर्षों तक जो इस नीति दे फॉलोअर्स होणगे वो आने वाले समय तक और वैलिड रहन और रेलीवेंट रहन, ये सारी चीज़ों का ख्याल किया गया।
0: क्योंकि अजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का जमाना है, ऑटोमेशन का है, डिजिटलाइजेशन है, सारे पहलुओं नू रख के ध्यान दे विच बनाई गई है। वो जड़ा रटन तोता भी पढ़ो
1: वो सब चीज़ा जड़ियां सब
0: परीक्षा दे खत्म हो गया। हुनरमंद भारत नू तरजीह दित्ती गई है
1: जी।
0: बहुत ही वधिया यह एक नीति का पहलू है कि जिथे हुनर नू प्रफुल्लित किया गया, क्योंकि हुनर साडे भारतीयां दे हत्थां दे विच हैगा
1: जी।
0: सर, मैं तुहानू पुछना चाहांगी कि जिस तरीके नाल मापे मतलब एक थॉट बनी हुई है कि जी ये नहीं सक्सेसफुल होनी कि प्लस टू तो बाद जिस तरह हमने 5-3-3-4 दी एक नीति बनाई गई है, इहदे बारे थोड़ा तुसी विस्तार नाल दसो तां जो जिहड़े मापिआं दे संशय ने वह दूर हो सकन।
1: देखो, जिहड़े बच्चे इस समय पैदा होए ने और इस नीति दे विच ट्रेन हो रहे ने कि मापे उस पिछली जनरेशन तो ने, वो एक खास किस्म दे ढांचे विचों निकल के आप आए ने, और नीति दे विच जिहड़े बदलाव आए ने वो डेफिनेटली हले वो इनिशियल स्टेजेस दे विच ने, इस करके कुछ ना कुछ मापियां दे दिमाग च कुछ जहन दे विच कन्फ्यूजन है।

0: ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ 8:45 'ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY 2027.
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली

0: की तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
2: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई।

0: उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
1: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
1: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
3: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
1: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X पर @AIRNews हिंदी को फॉलो

0: करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञ और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतःसूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं,

0: आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कौनारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती, इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कौन नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कौन नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृत निष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कौन नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएँ लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कौन नारायण की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मान कर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
1: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए,
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी

0: सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
1: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
2: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्जे हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
3: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है, इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
2: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना पिरोना काढ़ना और बुनना इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा, और रोने गला फाड़कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखलाकर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
3: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खाम का ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी, पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
2: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
3: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू फारसी कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी बुनाई सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर, मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे, मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी।

0: और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शय पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताज़ा ताज़ा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शय पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
1: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख न भाती थी, मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से न इन बातों को समझती थी और न समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
0: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई का बोलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूँ इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूँ बुला लूँ, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूँ, हंसाऊँ रुलाऊँ या जी जलाकर खाक कर दूँ, फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूं, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूं नचाऊं।
1: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आई जिन्होंने मुझमें खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बजाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मारखे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
0: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खतखत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेचदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को, कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था, जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की, और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया। मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
1: पत्रस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की

0: बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: इस्मत फुहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा, कोई ना पसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और ना पसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
0: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
1: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
0: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं।

0: अभी आपने सुनी इस्मत चकताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं, बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं, बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है, जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक, और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में, जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद, कविताओं का हमसफर में।
1: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा, मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक,

0: चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
1: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि, उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम रीतिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है, कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइए वाघर के चहुं पास, नित प्रति पुण्य रहे आनन हो पुजास। मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है, क्योंकि उसको मुख का उजाला ही इतना देखे। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है। ये केशव ने रामचंद्र का में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
2: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
3: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है, अंजुली भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने, लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
0: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
2: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
0: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं हूँ प्रांजल।
4: चांद, कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में

गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता, बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद्व और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक जिंद्र यादव, असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी, और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके, मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड द एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज, इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप अ हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads.

0: Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals, and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने पांचवें स्वर्ण पदक का जयघोष था। वो पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही चॉइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं, एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
1: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा

0: पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
1: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10, while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल सिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
0: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से

0: जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला पांचवें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच एक एक अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। दो मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकंड हाफ बाय कम्प्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th-6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0. And finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में दो लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
2: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
3: इन सेलिंग 16 ईयर ओल्ड माही वर्मा फिनिश 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कंपटीशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
3: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
3: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every 4 Indian debutants has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kg category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a 4th appearance. There were miles

0: almost beyond first, Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years, and the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत दे आज के प्रोग्राम च तुसी सुनोगे पंडित मनु कुमार सीन दास सितार ते वजाया राग ब्रजेश्वरी कौंस, चंद्र कौंस ते माल कौंस।

शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम च तुसी सुन रहे सी पंडित मनु कुमार सिंह दा सितार वादन। इना दा सितार ते वजाया राग ब्रजेश्वरी कौस, चंद्र कौस ते माल कौस तुसी सुन रहे थी। हुन सुन लिया इना दी ही वजाई धुन मिश्र खमाज़।

0: ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਮਨੋ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਰਾਗ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕੌਸ, ਚੰਦਰ ਕੌਸ, ਮਾਲ ਕੌਸ ਅਤੇ ਧੁਨ ਮਿਸ਼ਰ ਖਮਾਜ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
2: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई

0: दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमरीका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टुडे सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट डेकेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। एड्रेसिंग द फिफ्थ कौटिल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली, मिसेस सीतारामन सेड that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a ball explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Gangkhuya Gan.

मैसेज भी लगातार साढ़े को पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें सारा प्यार देने वास्ते। अगले मैसेज की गल करिए जी, भेजन वाले दोस्त जिन्होंने सानू बड़े प्यार दे नाल सजा के मैसेज भेजे, सत श्री अकाल इकबाल सिंह, रजिंदर कौर इंजीनियर, अमनदीप सिंह, सिमरनजीत कौर पिंड हठूर जड़ा लुधियाणा तो, डॉक्टर सतेंद्र सरताज उन्हों की आवाज़ गीत सुनना चाहते हैं और हाल चाल पूछ रहे हैं। हाल चाल बहुत वधिया है, थोड़ा मैसेज मिल गया, हाल होर भी वधिया हो गया है। अगले मैसेज की गल करिए जी, सानू भेजने वाले दोस्त ने नवप्रीत प्रताप नगर तो मानसा तो जरा चल के साढ़े तक मैसेज पहुँचे है। फरमाइश इन्होंने भी की है जी, जत्ती कसूरी की आवाज़ जरा सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, इस तो बाद दो ट्रैक असी बिल्कुल तो प्ले कर देने। सरहिंदी बाजार

0: दोस्त नंबर मिला के साढ़े को पहुंच के नहीं आओ, कल बात करते हैं।
1: सत श्रीकाल
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: अमनदीप
0: अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़े अपने प्रोग्राम च। हो सुनाओ, घर परिवार की हाल चाल है थोड़ा?
1: सब वधिया।
0: ते अज
1: तुसी
0: की
1: दस्सो।
0: खास सौगात साढ़े लिए लेके आए हो।
1: नान जी
0: मैं कह जी, अज केड़ा गीत साढ़े लिए लेके आए हो, केड़ी सौगात साढ़े लिए लेके आए हो?
1: हैप्पी राइट जी।
0: ठीक है जी, थोड़ी पसंद थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

ये आबाद रहिए मलियाना सरदना मिरड़ तो अनिल जैन जैन साहब सेम जैन मुस्कान जैन मास्टर जी वेम जैन जड़े ने सानू प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तापुरा जिला मध्य प्रदेश तो मजहर अली अंसारी रईया बेगम अंसारी तो मुहम्मद सादिक अंसारी हुणा ने सानू याद किया है। प्रसारक मौदे को प्यार भर नमस्कार। आप पसंदीदा कोई भी गीत हमें सुना दिए। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा तो राजेश सेन सुरेखा सेन हुणा ने सानू प्यार भेजा है। कोई भी गीत सुना दो। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगीड़ी अलोड़ जिला रतलाम एमपी तो जगदीश धाकड़ श्रीमती रंजू बाई धाकड़ युवराज धाकड़ ते शिवांगी धाकड़ उन्होंने प्यार भेजा। गांव तुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू राजपाल काजम नाक्षी मानवी लवी मोहनी बलवीर सिंह उन्होंने सानू प्यार भेजा। लो जी फरमाइश की है किसी भी पंजाबी गीत सानू शामिल कर। लो जी थानू असी शामिल कर लिया। दिल च तुसी वसदे हो ते फिरोज खान दी आवाज़ च तुहाडे तक पहुँच रहा गीत।

बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म करने दी दो इजाज़त। अगले शनिवार ठीक 11:10 से मिलाए कि हाजिर हो जाना प्रोग्राम सौगात। जाना तो उसी कितनी है सफ़र है साथ है प्यार है विश्वास, क्योंकि ठीक 1 बजे थोड़े लिए पंजाबी नाटक, उस तो बाद म्यूजिकल फीचर है सफ़र है साथ, इतना ही चलता रहना है। तो सो मिलते हैं इस गीत तो बाद।

अगस्त दा महीना आजादी दी लड़ाई च संघर्ष ते त्याग दी अमर गाथा लिखण वाले सूरबीरां नूं याद करण दा महीना, देश दी मिट्टी नूं नमन करण दा महीना। इस महीने दे शुरू हुंदिया ही मैनूं कुछ दृश्य याद आउण लगदे ने, कुछ आवाजां सुनाई देण लग पैंदियां ने।

0: झांसी याद है? आ देखो झांसी का किला। रानी लक्ष्मी बाई बहादरी ते कुर्बानी ते बलिदान दी मिसाल इन्नी के मर्द प्रधान समाज भी मर्दानी कहलाई।
1: महारानी साहिबा, एक विदेशी अफसर आया है, कहना है कि मैं गवर्नर जनरल का एक महत्वपूर्ण संदेश देना है।
2: तो मेरा शक सही निकलिया। सुंदर बाई, उस विदेशी अफसर नू दीवान खाने च बिठाओ, मैं हुणे आउनी आ।
1: जो हुक्म महाराणी। अफसर साहब, अपना सुनेहा दिओ, महाराणी सुन रही है।
3: मैडम, मैं मेजर आयरिश हाँ। गवर्नर जनरल मैलकम साहब ने अपने पत्र राही तुहानू यह सुनेहा भेजा है कि असी बच्चे दामोदर राव नू तुहाडा गोद लिया पुत्र ऐलानन दी तुहाडी मंग नू ठुकरा दिता। इसलिए हुक्म अनुसार 7 मार्च 1854 की आग्ञा के अनुसार राज झांसी बरतानवी खेतर नाल मिला दिता गया। इस राज यानी इस सूबे नू जनता नू हुण ब्रिटिश सरकार के अधीन समझो। दस्तखत गवर्नर जनरल मैलकम।
4: की? मैनू ए फरमान बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ए मेरा राज है। मैं अपनी झांसी अपनी मात भूमि नू किसी भी शर्त ते नहीं दवांगी।
5: बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: इनकलाब दी रूह च तब्दीली दी पुकार हुंदी है, अजिही पुकार जिस नाल इतिहास अक्सर कंपता है। तख्त दे पैर कंपन लग पैंदे ने, सत्ता दे नशे च डुब्बे हुए ताज सिंघासन मिट्टी हो जाते ने, बेइंसाफी दे पैर थिड़कन लग पैंदे ने। वो इनकलाब नू कुचलन लई हर चाल चलदे ने, पर इनकलाब दे पुत्र महान सूरबीर योदे ना तो अपना रस्ता बदलते ने ते ना ही अपना इरादा। वो हर खतरे का सामना होर जोश नाल करते हुए अपनी कुर्बानी नाल नवा इतिहास रच बहादरी की नवी कहानी लिखते ने।
6: मौत ने एक बार आना ही है तो क्यों है डरना, साडे लई तां खेड समान है देश लई मरना।
7: देश हमेशा खुशहाल ते आजाद रहे, साडा की है हसी रहिए जा ना रहिए।
8: वत

0: जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
1: चलो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ते उना दे साथी क्रांतिकारी कवि अशफाकुल्ला खान बारसी, ठाकुर रोशन सिंह ते राजेंद्र लहरी दी करम भूमि शाहजहांपुर दियां गलियां च घूमदे आ। की तुसी टाउन हॉल रोड ते आर्या समाज मंदिर देखे? क्रांतिकारियां दियां मीटिंगां इत्थे ही हुंदियां सन। काकोरी कांड दी मशहूर मीटिंग भी इत्थे ही हुंदी सी। बिस्मिल दे साथी भी सन अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, बिस्मिल अशफाक दे नाल मुकंदी लाल, केशव चंद्र राम कृष्ण खत्री, मुरारी लाल शर्मा ते बनवारी लाल वर्गे क्रांतिकारी बिस्मिल अशफाक दी जोड़ी ने क्रांति दी नवी शुरुआत की थी। की तो अनु 9 अगस्त 1925 याद है? उत्तर प्रदेश दे काकोरी स्टेशन ते रेल गड्डी राही जा रहे सरकारी खजाने नू लुटन दी योजना नू इस दिन अंजाम दिता गया सी। ते इस तो बाद 26 सितंबर 1925 दी रात नू देश भर तों कुल 40 नौजवानां नू गिरफ्तार किया गया सी। चंद्रशेखर आजाद तो इलावा बिस्मिल दे सारे क्रांतिकारी साथियों ते एक तो बाद एक मुकदमा चलता रहा। कुछ नू बरी कर दिता गया, कुछ नू बिस्मिल, अशफाक, ठाकुर रोशन सिंह ते राजेंद्र लहरी, बिस्मिल ते उहदे साथियों नू जेल विच तसीहे दिते गए। ते जदों सारे तरीके असफल हो गए तां कई होर तरीके वरते गए।
2: अल्लाह पुत्र, ये कलामे पाक है तेरे लिए।
3: बिस्मिल, ये हिंदू अपने लिए एक देश हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ तुहानू वरत रहे ने।
4: इस नू भारत की आजादी कहो, हिंदुओं की आजादी नहीं। पर तुसी की समझोगे? तुसी सिर्फ अंग्रेजां दी चापलूसी करन विच दिलचस्पी रखते हो। इथों जा सकते हो तुसी।
1: बिस्मिल दे साथी राजेंद्र लहरी नू 16 दिसंबर नू गोंडा जेल च फांसी हुई सी। 14 दिसंबर नू उसने अपने साथियों लई एक चिट्ठी लिखी सी। तुहानू याद है कि उस विच की लिखिया सी?
2: मौत की है, ये जीवन दी एक होर दिशा तो इलावा कुछ नहीं। इसलिए मनुख मौत तो दुखी ते डरदा क्यों है? मैं विश्वास है कि साड़ी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। सारियां नू मेरियां शुभकामनावां।
1: 19 दिसंबर 1927 नू राम प्रसाद बिस्मिल नू उत्तर प्रदेश दी गोरखपुर जेल च फांसी दित्ती गई सी। फांसी तो कुछ दिन पहला ही उसने अपने एक दोस्त नू चिट्ठी भेजी सी, जिस च लिखिया सी,
5: उन्हें नू जो कुछ भी होने वाला है मैं उस लई पूरी तरह तैयार हाँ। एक ही है, ये सिर्फ शरीर दा बदलना है। मैनू भरोसा है कि मेरी आत्मा जल्दी ही मात भूमि ते इस दे गरीब बच्चियां लई उत्साह नाल काम करन लई वापस आएगी।
1: अद्भुत लोग सन, देश दे लई ही जिए ते देश दे लई ही कुर्बान हो गए।
5: नाम की है तुहाडा?
6: चंद्रशेखर आजाद।
5: पिता दा नाम?
6: स्वतंत्र।
5: घर किच्छे है?
6: जेल।
1: 27 फरवरी 1931, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, कौन बोल सकता है?
6: माफ करना मां, मैं सिर्फ इन्नी ही सेवा कर सकिया। मैं तेनू सलाम करता हूं।
1: क्रांति दूत आजाद अपनी आखिरी साह तक लड़ते रहे ते आजादी का परवाना चला गया। लाहौर कमीशन के चेयरमैन सर जॉन साइमन जद लाहौर पहुंचे तो लाला लाजपत राय की अगवाई हेठ कमीशन के विरोध का तूफान आसमान नू छूण लगा।
7: साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन।
1: पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने भीड़ से अन्यवाह लाठीचार्ज किया।

0: नाल सानू स्वै रख्या ते भी जोर देना चाहिदा है। नौजवानों नू फौज विच भर्ती होना चाहिदा।
1: ना बिल्कुल नहीं, मैं हिंसा विच विश्वास नहीं रखता।
0: स्वै रख्या हर व्यक्ति दा धर्म है। एक शिकारी जीव दे सामने अहिंसक होना मूर्खता है।
1: सावरकर जी, तुहाडे विचारां विच बहुत मतभेद ने।
0: पर कोई मनभेद नहीं है। मैनू तुहाडे लई बहुत सत्कार है।
1: तां तुसी राजनीति विच कदों आ रहे हो?
0: मैं एक असफल सियासतदान हाँ।
1: क्यों?
0: सियासतदान जो सोचते ने वो बोलते नहीं, तो जो बोलते ने वो सोचते नहीं। असी उही बोलते हाँ जो असी सोचते हाँ। मैं फेस मास्क के हक विच नहीं हाँ।
1: बुरा लगता है।
0: सच कौड़ा हुंदा है। तुसी भी तो सच की गल करते हो।
1: ठीक है, चलो हुण मैं चलदा।
0: चंगा लगा कि तुसी आए हो। गांधी जी, मतभेद अपने थां रखदे ने। तुहाडी ते मेरी धारा वक्खरी हो सकती है। अंत च असी एक बिंदु ते मिलदे हाँ। उस बिंदु का नाम है आजादी, स्वतंत्रता। नमस्कार।
1: नमस्कार। देश ते देश दी आजादी लई सब कुछ कुर्बान करन लई प्रेरणा देन वालियां इत्थे अनगिनत घटनावां ते शख्सियतां दा इतिहास है। आओ सारे मिल

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

एक कल्पित पात्र मनिया जाता है जिस दे शहर ते होर वेरव्या बारे कोई जानकारी नहीं मिलती। कादर यार दसदा है कि राणी सुंदरा दी सुंदरता दियां तुम्मां दूर दूर तक पईयां सन। उहदे सुहापण उत्ते राजे महाराजे तां की जोगियां ते फकीरां दे दिल वी डोल जांदे सन, पर उस सामने कोई अजिहा व्यक्ति नहीं सी आया जिस नूं वेख के उसका मन डोल गया होवे। उसके कोल नौकर चाकर गोलियां बांदियां हमेशा हथ बन्नी उस दे हुकम दी उड़ीक कर दिया सन, पर उस कोल कोई अजिहा नहीं सी जो उसनू प्यार दे सके। एक दिन पूरन भगत जिसने अजे नवा नवा ही जोग गुरु गोरखनाथ तो तारिया सी नू प्रतिज्ञा वजो गुरु गोरखनाथ ने राणी सुंदरां दे महली भिख्या लैण लई भेजिया। नाल ही उसने ये भी कहा कि भिख्या राणी सुंदरां दे हथों ही लैनी है ते नसीहत भी की।

महान जोगी ने चिप्पी चिमटा पकड़ पबूत लगा के मोटे बगली पा के रानी सुंदरा दे मैली जा अलख जगाई।

गोली पिछले पैरी मुड़ जाती है। अंदर जाके राणी नू जोगी नाल हुई व्यथा बड़े मजाकिया लहजे विच सुनाउंदी है। राणी पहला तो गुस्से विच आई पर फिर जोगी नू चरोखे विचों वेख के उसनू अंदर आउण लई कहिंदी है। जोगी गुरु दे हुकम नू ना टालदा होया अंदर नहीं जांदा। इन्हें नू राणी खुद हीरे मोतियां दा थाल लै खुद जोगी नू भिख्या पाउण लई आ जांदी है।

पूरण दी सूरत वेखदिया ही राणी सुंदरा दे अंग अंग प्रेम चरनाटा छिड़ गई। वो जोगी नू वेखदिया ही अपना दिल हार बैठी। मोतियां दा थाल जमीन ते रख उसने जोगी दे चरण पकड़ ले ते कहन लगी, हे जोगी मेरी उजाड़ दुनिया विच खेड़ा बख्श। ते जोगी नू अंदर आउण लई मिन्नतां करन लगी। पूरण ने

पूरन ही कहिंदा होया नाथ दे टिले ते वापस आ गया। हीरे लाल गोरख अगे ढेरी कर दिते। गोरख कहन लगा, ये पत्थर साडे किस काम? ये मोड़ के कुछ रिद्धा पक्का लेके आ कमलिया। पूरन पिछले पैरी राणी सुंदरां दे महली परत आउंदा है ते कहिंदा

ज्यों ही राणी सुंदरा ने जोगी की आवाज सुनी वह भजी भजी आई जिमें पहला ही उसकी उड़ीक कर रही हो। जोगी ने उसनु हीरे जवाहरात वापस कर दिते ते कहन लगा, जेकर सानू रिद्धे पक्के भोजन की भिख्या मिल जाए तो चंगा है, नहीं तो होर किसी दर तो मंग लेने। टिले ते जोगी भुखे बैठे ने। राणी ने झट भोजन तैयार करवाया, गोलियां दे सिरां ते रखवा के गोरख दे टिले वल

गोरखनाथ खुश होया कि उसने सारे चेलियां विचों केवल पूरन ही इस इम्तिहान चों पास होया। राणी दे भोजन तो खुश होके गोरखनाथ सुंदरा नूं कहण लगा, जो कुछ भी तेरे दिल नूं चंगा लगता है साडे कोलों मंग लै। राणी कहण लगी, मेरे कोल नौकर चाकर माल खजाना ते हकूमतां दी थोड़ नहीं, जे थोड़ है तां सखणे मन लई अपना पूरन बख्श दिओ, जिस अगे मैं अपना दिल फोल सका। राणी ने झोली अड़ के नाथ अगे पूरन लई वास्ता पाया। नाथ राणी नूं वचन दे चुका सी, उसनूं मोड़दा किवें? पूरन नूं राणी

पूरण दे जान दी खबर राणी सुंदरां लई मौत तो घट नहीं सी। वो पूरण दे विछोड़े विच कमली हुई महल दे उपर चढ़ गई ते उस दे विछोड़े दा दर्द ना सहारदी हुई महल तो छाल मार के अपनी जान दे दी।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

गुरबाणी प्रभु दी उस्तत है, सच्ची सिफत सलाह है, सच्चे दी कीर्ति है। मनुखी मन अते इंद्रियां दा उचित प्रयोग यही है कि इन्हां नूं चंगे पासे लाया जावे। इस नाल समा भी सफल हुंदा है ते इंद्रियां दा परिवार भी सफल हुंदा है, पर यह समा प्रभु दी कृपा सदका ही टुकदा है। सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच पंचम गुरदेव बेनती करदे हुए फरमाउंदे ने, हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिस तरह साधु जन सदा प्रभु दे गुण गा के रस माणदे हन, अमृत रस प्राप्त करदे हन, कृपा करो मेरे लई भी ऐसा जोग बनाओ कि जिस वेले मेरी रसना भी प्रभु दा नाम उचार सके। हे प्रभु जी, आप जी दी याद सिमरन ही मनुखा जीवन है। जिस उपर प्रभु जी आप मेहर करदे हो, उही आप दी निकटता हासिल कर सकदा है। आप उससे दे ही अंग संग हो जांदे हो। प्यारे जीवानू आप जी दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है, ते इस नाम दे दाते प्रभु जी आप ही हो। सृष्टि विच रमे हुए राम नू चेते कीत्या ही संतां प्रभु प्यारिया ने आत्मिक सुख माणिया है, ते ए दात सब किछ जाननहार प्रभु दे हथ विच ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 743 ते फरमान है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरमेज सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। आपे बहु बिद रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। इसी तरह ही फरमान है, आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी। गुजरी राग विच उचारे हुए शब्द विच पंजवें पातशाह मन नू मोह लैण वाले प्रभु नू प्राणा दा आसरा जिंद जान मंदे ने। उस रंगले प्रभु नू अपने हिरदे विच वस्या जान के उसकी अश्चर्ज लीला नू वेखते हुए प्रसन्न हुंदे ने ते हिदायत करदे ने कि दिने राती उस प्यारे प्रभु की आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने

0: मखना की जैटी ला, संत सेवा कर पावनी ला, ये त्याग मान हठीला। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने प्रिंसिपल बलदेव सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 478 गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी के पवित्र मुखवार पंथ तो उचारिया होया है। गुरु साहिब जुग्यासू नू संबोधित होंदे होए फरमाते हैं कि हे प्यारे गुरसिखो, परमात्मा का नाम जपो, उसकी आराधना दिन रात स्वास स्वास करते रहो, दिन राती आराधो प्यारो, निमख ना कीजै ढीला। इन्हां पावन पंक्तियां विच आराधो शब्द आया है जो कि आराधना शब्द तो बनिया है। आराधना पुरातन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है पूजा करना, भगती करना, इबादत करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आराधना शब्द की वरतों गुरु साहिब जी ने बार बार की है, जिमें आराधो, आराध, आराध्या, आराधी। परमात्मा की आराधना करने वाला मनुख आप तो तरदा है, अपने नाल जगत को भी तार दिता है। गुरबाणी का फरमान है, जन नानक नाम आराध्या सब जगत तराया। जेडे मनुख परमात्मा की आराधना करते हैं उन्हां दे बराबर कोई होर नहीं हो सकता। गुरबाणी का फरमान है, जन नानक नाम आराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। आराधना का कोई समा स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर जगह ते है ते जदों मर्जी उसनु असी याद कर सकते हैं। गुरबाणी का फरमान है, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाई। परमात्मा आप पूरा है, उसका नाम पूरा है, सो यह मनुख परमात्मा दे नाम की आराधना कर। गुरबाणी का फरमान है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। दिन राती आराधो प्यारो, निमखना कीजै ढीला। उक्त पंक्ति विच गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे मनुख, प्रभु की उस्तत दिन रात करदा रहो, अख झमकन जिन्ना समा भी ढिल ना कर। शब्द दीआं अगलियां पंक्तियां हन, संत सेवा कर भावनी लाइए, त्याग मान हठीला। मनुख नूं अपने मन विच्चों हठ हंकार नूं त्याग के भै भावनी अते पूरी श्रद्धा सत्कार दे नाल गुरु साहिब वालों दसी सेवा करनी चाहीदी है। शब्द दीआं अगलियां पंक्तियां हन, मोहन प्राण मान रंगीला, बास रहो हीरे के संगे, पेख मोहो मन लीला रहाओ। खिड़े सुभाव वाला अते मन नू मोह लैण वाला सुंदर प्रभु, मेरे प्राणा दी जिंद जान है, जिंद दा फकर है, ओह हमेशा मेरे हिरदे विच वसदा है। मेरा मन उसते कौतक वेख वेख के विस्माद हो रहा है अते मस्त हो रहा है। शब्द दीआं अगलियां पंक्तियां हन, जिस सिमरत मन होत आनंदा, उतरै मनो जंगीला। मनुखी मन नू कई जन्मां तों विकारां दी मैल लगी हुई है, जिस करके इसका मन सुआह वर्गा काला होया है। गुरु साहिब जी ने तेल वाले कोलों नू साफ करन वाले कपड़े दी उदाहरण दिती है कि कोलों नू साफ करन वाला कपड़ा इन्ना ज़्यादा गंदा हुंदा है कि भावें उन्नू 100 वरां धो लो पर उह साफ नहीं हुंदा। गुरबाणी का फरमान है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सियाहो, खनली धोती उजली न हो वई, जे सौ धोवन पाहो। गुरप्रसादी जीवत मरै उल्टी होवै, मत बदला हो, नानक मैल न लगई ना फिर जोनी पाहो। परमात्मा का सिमरन करन नाल जन्मा जन्मांतरां दे विकारां रूपी मैल उतर जाती है अते मन आनंदित हो जाता है, खेड़े विच आ जाता है। सिमरन दे नाल मनुक

आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो, नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक-वक चैनल अते आकाशवाणी दे वक-वक भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियन कर प्रगटक सुनाया। सतगुरु मिले सदन तज विच मुद काया। उतमे विचार है सचे सुच दिलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

सत गुर परसान, सोई पुरख सिवर साचा, जाका इक नाम अशल संसारे, जिन भगत भव जल तारे, सिमरै सोई नाम जिन भगत भव जल तारे, सिमरै सोई नाम जख अर किन्नर, साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखिया

छैल लोजिन उधरया, सोई नाम अशाले भगत भवतारन, अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम शिवर नव।

0: जो सिर निवह गोरे अमर नित, तिनर दुख नह भुख ते नर ने धन नह कहिए, ते नर शोक नह हुआ ते नर से अंत ना लहिए, ते नर सेव नह कर ते नर सहस समप, ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप, सुख लहे ते नर संसार मह, आप पट रिप मत ते सके अथ ते नर जालप पण, गुर अमरदास सो परसन जे।
1: तैं पढ़ियो इक मन धरियो, इक कर इक पछाण्यो, नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जान्यो, सुपन इक प्रतख इक इक असमेलीनो, तीस इक अर पंज सित पैंतीस नाखीनो, इको जे लाख लखों अलख है इक इक कर वरण्यो, गुरु अमरदास जालपण तो इक लुड़ है इक मन्यो, अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहुत साथ सोदामा, अपदा ते राख्या गनका पर पुरे तहकाज, श्री सतगुर सो परसन कल युग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
2: गुर अमरदास परस ये ओहम पातक बिनास है, गुर अमरदास परस है सिद्ध साधक आसास है, गुर अमरदास परस है ध्यान लहे भौ मुख है, गुर अमरदास परस है भौ लभे गौ चुक है, एक बिन दो गण जो तो रहे, जास मंत्र मान में लहे है, जाल पाप दारथ इतड़ है, गुर अमरदास डिठ है मिल है।
0: सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारे, जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लैना थप्यो, जेन श्रब सिद्धि कब जन कल सबुदि, कीरत जन अमरदास बिस्तरिया, कीरत रव किरण प्रगट संसार है साख त्रोमर बमल सरा, उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया, सोई नाम अशल भगत है पवतारण अमरदास गुर को फुरिया।
3: सिमरै सोई नाम जख हर किन्नर साधिक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर सूर

मावल कुसुम बसंत गणंत ना आवै, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुदर ध्यान ज्ञान

नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रब लोए दर्शन परस गुरु कै आठ सठ मजन हो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सारे काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सयों एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख होवे सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुत डिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साह सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे सजन सचा पात साह सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला

सतगुरु पूरे पाणा जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी सतगुर पूरे पाणा ता जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई।

गहलीने स्वर्ग सदीने आप है आप मिलाया। कहो नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा तां जपिया नाम रमाणा गोबिंद कृपा धारी प्रभ राख।